बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं संगीत आराधना,

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भी संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं आ तुहां दी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर होई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। ता श्रोताओं कर दे न अज दे कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते कन्ने। तुहां सारे इं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने तन दी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ। इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ। ता बढ़दे न कार्यक्रम च अगे कने सुनदे न कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

गल्ला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेश होताओ तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ दे ना कार्यक्रम च अगे कने सुन दे ना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जा करके लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: ये सब
4: हमको मंडी जाना है। अच्छा, क्या दिख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पढ़ देगा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने, नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे हो? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी। पर बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय 9 बजे का है और कार्यक्रम इस समय आप सभी सुनते हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोता हूँ, आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें, और जो श्रोता कहीं दूर से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन सभी को सुषमा की दोहा जोड़कर राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं सुनाइए, आप सभी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने घरों के काम के साथ साथ मनोरंजन की ओर भी आपका ध्यान होगा, यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ज़रूर ज्वाइन किया होगा और हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम में, और जो श्रोता नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप ही आ जाइए, क्योंकि हमारे लिए एक एक श्रोता बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, आप हैं तभी हम हैं। तो कार्यक्रम में जुड़िए और ट्यून इन होइए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है अब यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो श्रोताओं, ये 2 घंटे का सफ़र आज मुझे मिला है आपके साथ बात करने का, तो मैं भी चाहूँगी कि हमारे सभी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़ें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत रोज़ाना की तरह करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। श्रोताओं, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो, अपने कर्मों पर भी कभी तो शोध करो। बिल्कुल, तो आज का विचार बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सोच विचार करने वाला है। तो श्रोताओं, इसी सोच विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले लेते हैं आज का कार्यक्रम का पहला गीत, क्योंकि गीतों के साथ अगर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए तो हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और हमें भी ज़रूर अच्छा लगेगा। और आज बातों की पिटारे में क्या कह मैं लेकर आई हूँ वो आपके समक्ष ज़रूर रखूँगी, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं, सोनी महिवाल, इस फिल्म के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसी फिल्म का गीत आज आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में, समीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

91.2 मेगा हर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप जुड़ चुके हैं श्रोताओं। और साथ ही आपको बता दें 88.4 मेगा हर्ट्ज पर हमीरपुर के ठठवाल की आवाज़ पर भी आप कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की नमस्कार गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़े होंगे। तो श्रोताओं जैसे ही सुबह हो जाती है 9 बज जाते हैं हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो कि पिछले दिन हमने लिस्ट बनाई होती है कि आज हमने ये सब काम करने हैं, तो वो सब काम लेकर हम घर से निकल पड़ते हैं। और आज हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके सोचे हुए काम जो आपने रखे हैं आज के लिए वो ज़रूर सफल हों और उन कामों को आप बहुत अच्छे से कर सकें। और साथ ही श्रोताओं देखिए मौसम की बात अगर करें तो पिछले कल इतनी तेज़ बारिश थी कि घर से निकलना मुश्किल था और बहुत सारे काम कल के लिए भी हमने रखे थे लेकिन वो बारिश की वजह से कई लोग नहीं कर पाए। लेकिन श्रोताओं आज का मौसम अच्छा है और आज अगर आपने काम सोचे हैं कहीं जाना है तो ज़रूर जाइए अपने काम निपटाइए क्योंकि आज बारिश नहीं है। तो श्रोताओं मौसम की जानकारी कार्यक्रम का हिस्सा है तो चलते हैं मौसम की जानकारी की और धर्मशाला की बात करें तो अभी के लिए फ़िलहाल बारिश तो नहीं है, हल्के फुल्के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। बारिश जो है वो हो सकती है हल्की फुल्की आज, लेकिन पिछले कल बहुत तेज़ बारिश रही। तो श्रोताओं धर्मशाला की ही बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान धर्मशाला का 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा गया है। साथ ही हवा में नमी की बात करें तो 93% हवा में नमी बनी हुई है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे श्रोताओं आज आप अपने काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे कि कुछ लोगों ने राखियां पोस्ट करनी है, पोस्ट ऑफिस जाना है, कुरियर ऑफिस जाना है, तो वो आज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और साथ ही मौसम की बात कर रहे हैं श्रोताओं तो मौसम ने देखिए हर साल बरसात आती है और हर साल कहीं ना कहीं तबाही जो है वो होती ही होती है और इस बार भी ऐसा ही रहा। तो थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि बारिश ने क्या क्या कहर ढाए हैं, कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुए हैं। तो पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर नूरपुर रोड तलाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक के एक तरफ भारी बारिश के कारण ज़मीन जो है वो धंसने से उत्तरी रेलवे के जम्मू डिवीज़न को मंगलवार सुबह ट्रेन सेवा निलंबित करनी पड़ी है। और साथ ही श्रोताओं अगर हम और बात करें तो उपमंडल नूरपुर में इस बार बरसात ने भारी तबाही मचाई है जिससे लोगों के घर, दुकानें और गौशालाएं सभी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों का लगभग 19,20,000 रुपये का नुकसान भी हुआ है। साथ ही साथ बात करते हैं नगरोटा सूर्या की तो लंज बाया स्लोल गगल सड़क मार्ग पर भोरवली के पास भूस्खलन से भारी मलबा गिर गया। मलबा गिरने के कारण सड़क मार्ग पर करीब 3 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। तो श्रोताओं ऐसे हाल हैं आजकल सड़कों के मौसम के वजह से। तो ऐसे में हम यही कहेंगे अगर आप सफ़र करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए और नहीं ज़रूरी हो तो सफ़र को अवॉइड कीजिए। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कार्यक्रम में आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज स्पेशली एलिफेंट डे हम लोग मना रहे हैं, साथ ही इंटरनेशनल यूथ डे भी हम मना रहे हैं तो इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में मौसम की बात की है तो एक प्यारा सा गीत मौसम पर बनता है, मेरा घर मेरे बच्चे। इस फिल्म का गीत श्रोताओं समीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: से दो जिलों बिलासपुर व हमीरपुर के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आज बिलासपुर जिला के धराड़सानी में मछुआरा सम्मान निधि वितरण व सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बिलासपुर के करीब 1700 मछुआरों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और मछुआरा समुदाय के साथ संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वे मत्स्य कार्य योजना और विभाग की योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने देश में टीबी को खत्म करने और इसके प्रसार को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान की सफलता के लिए सांसदों, विधानसभा सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों को जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधि टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने कसौली छावनी क्षेत्र के बाजार के दुकानदारों से जुड़े किराया वृद्धि के मामले को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को सौंपे पत्र में बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली द्वारा दुकानों के लीज रेंट में प्रस्तावित 20% वृद्धि और दुकानों के विस्तारित हिस्सों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से स्थानीय दुकानदार चिंतित हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस निर्णय से दुकानदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने इस प्रस्तावित किराया वृद्धि और अतिरिक्त शुल्क वसूली को स्थगित रखने का केंद्रीय रक्षा मंत्री से आग्रह किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हिमाचल में पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के सर्वेक्षण के लिए डीपीआर तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। सांसद राजीव भारद्वाज द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय सर्वेक्षण और यातायात अध्ययन पूरा करने के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजीव भारद्वाज ने रेल लाइन की डीपीआर के परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार मध्य रात्रि से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ व विधवा सेस लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य कर व आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियम 2005 की धारा 6A के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ये सेस लगाया जाएगा। सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि 13 जनवरी 2023 से 31 मई 2026 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1628 निर्णय लिए गए, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को बाकी निर्णयों को भी समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल जुब्बल उपमंडल के दूर दराज क्षेत्र खनाशनी में 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खनाशनी क्षेत्र में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसान बागवान अपनी फसलों को समय पर बाजार तक पहुंचा सके। इस दौरान रोहित ठाकुर ने जन समस्याएं भी सुनी। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मददगार बन रही है। योजना के तहत कुल्लू जिला के 126 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 11,34,000 रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों को दी गई है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 3,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: इस योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेलियर, हीमोफेलिया, थैलेसीमिया, पार्किंसन रोग तथा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर

0: एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के 126 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल से जून तिमाही की वित्तीय सहायता के रूप में 3,000 रूपए प्रतिमाह की दर से कुल 11,34,000 रूपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गयी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गेहूं व चावल के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के आधुनिक स्टील साइलो खोलने की केंद्रीय मंत्री से मांग की। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर में आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधा स्थापित होने से किसानों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदेश में पिछले दो दिनों में हुई बारिश के बाद आज राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। कई स्थानों पर बारिश से प्रभावित विभिन्न सड़क मार्गों सहित बिजली व पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच कल शाम लाहौल स्पीति जिले के जहालमा नाले में आई बाढ़ से जोबरंग पुल का आधे से ज्यादा हिस्सा जलमग्न हो गया है, जिससे 3 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। नाले के तेज बहाव से आए मलबे के कारण लोगों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति के तीनों कोही और कोलंग क्षेत्र में कल अचानक से बादल फटने के बाद मुंची नाले और चपोर नाले में आए भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। मुंची नाले में पानी के तेज बहाव से पुल पूरी तरह बह गया, जिससे नाले के पार जाने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग बंद हो गया है। संपर्क मार्ग के टूटने के कारण नाले के पार सैकड़ों मवेशी भी फंस गए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालना ग्रामीणों तथा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बाढ़ के पानी ने सिंचाई कुल्हों, मुख्य पानी की पाइपलाइनों, पेयजल टंकियों और संपर्क सड़कों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। पानी का रुख खेतों की ओर मुड़ने से खड़ी फसलें और उपजाऊ कृषि भूमि मलबे की चपेट में आ गई है। प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने की और राहत एवं मुआवजा देने की मांग की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा व मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, 60 पैसे लगा अनाथ व विधवा सेस। दैनिक जागरण व हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से एक जैसी सुर्खी दी है, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री। दिव्य हिमाचल के मुताबिक अब 33 साल के होमगार्ड भी पुलिस भर्ती में ले सकेंगे भाग। दैनिक भास्कर के अनुसार भारी बारिश में भराड़ी घाट में चलती कार पर गिरा पत्थर, एक की मौत, 204 सड़कें बंद। पंजाब केसरी का शीर्षक है, दाड़ला घाट, रामपुर, मंडी व कुल्लू में वाहनों पर गिरी चट्टाने, एक की मौत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान व धूमधाम से मनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज बिलासपुर जिला के धराड़सानी में मछुआरों को प्रदान करेंगे आर्थिक सहायता। प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 60 पैसे हुआ महंगा, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। मुख्यमंत्री सहारा योजना कुल्लू जिला के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बनी मददगार। और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ, लाहौल स्पीति के जहालमा नाले में आई बाढ़ से जोबरंग पुल जलमग्न, 3 गांवों का संपर्क टूटा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, समाचारों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम का आगाज़ कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और उसके बाद हम आपके साथ करने वाले हैं बहुत सारी बातें। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। लीजिए सुनिए आरोप फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

श्रोता, इस प्यारे से गीत को हमने आप तक पहुंचाया और ज़रूर आपको ये गीत पसंद भी आया होगा। श्रोता, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक नए नए गीत पहुंचाएं। खैर, नए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो गीत बहुत समय से नहीं आपको सुनवाया गया हो वो सुनाया जाए। तो इस कोशिश में हम कामयाब भी रहते हैं और आपको ज़रूर हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जैसे कि हमने बात की थी कि आज ख़ास बात होगी एलिफेंट डे पर और साथ ही इंटरनेशनल यूथ डे पर। श्रोताओं, इंटरनेशनल यूथ डे पर आपके साथ बात करेंगे और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम में यूथ यानी कि हमारे युवा अपनी किसी बात के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं 10 बजे के बाद, 10 से 11 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर रहेगा 7018117091। तो श्रोताओं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व हाथी दिवस की। बिल्कुल, आज हम बात उस विशाल जीव की जिसकी चाल में शाही अंदाज है, जिसकी याददाश्त की मिसाल दी जाती है और जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथी, हाथी मेरा साथी। बिल्कुल श्रोताओं, और आज इस दिन को विश्व में मनाया जाता है और 12 अगस्त है आज का दिन श्रोता, और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, साथ ही इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। पर अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं विश्व हाथी दिवस की। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ हाथियों के बारे में जानना नहीं श्रोताओं, बल्कि उनके सामने खड़ी चुनौतियों को समझना और उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी करना है। श्रोताओं, हाथी केवल जंगल का एक बड़ा जानवर नहीं है, वह जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ों के जो बीज हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हाथियों की भूमिका होती है। उनके आवागमन से जंगल में कई छोटे बड़े जीवों के लिए भी फायदा होता है। तो श्रोताओं, आप कहेंगे वो कैसे? तो जब भी हाथी कहीं से भी गुजरता है तो उसका जो गोबर है, जो लिद है, उसमें बहुत सारे ऐसे बीज और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो हैं वो आती हैं जिससे कि वो यहाँ पर भी उग जाती हैं। तो श्रोताओं, हाथी को देखकर हमें मज़ा भी बहुत आता है लेकिन डर भी लगता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब भी हाथी आपको दिख जाता है उसे प्रणाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे गणेश भगवान का भी स्वरूप है। और माना गया है कि किसी मन्नत को लेकर अगर हाथी के नीचे से अगर हम गुजर कर जाते हैं तो वो मन्नत पूरी होती है। श्रोताओं, कोई भी वन्य प्राणी हो, चाहे वो हाथी है, चाहे वो घोड़ा है या कोई भी है, हर किसी को अपने जीवन का खतरा रहता है। और हम ये मानते हैं कई बार वो हिंसक बन जाते हैं, लेकिन वो हिंसक तभी बनते हैं जब उन पर हमारा कोई हमला हो या उन्हें हमसे कोई ख़तरा होता है। तो श्रोताओं, आज खास एलिफेंट डे पर हम बात कर रहे हैं, और भी बातें करेंगे, लेकिन हाथी मेरे साथी ऐसा ही एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए आज चुनकर लेकर आए हैं। चलते हैं हाथी मेरे साथी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत। एलिफेंट डे पर हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, ज़रूर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम अपने विषय से बाहर निकलेंगे और कुछ एक बातें जो हैं वो आपके साथ करनी है। वैसे तो इन बातों को करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में ये बात आ जाए, समझ जाए कोई, तो किसी का भला हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर देख लीजिए, न्यूज़पेपर पर देख लीजिए, ये खबरें बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे कि कुछ एक खबरों के बारे में ज़रूर आपके साथ बात करेंगे श्रोताओं। अभी एक खबर जो है वो आपने सुनी होगी, शहर के न्यू प्रेल पुल

शराब के नशे में धुत कलयुगी पिता ने 6 वर्षीय बेटे को उफनती रावी नदी में फेंक दिया। ये तो रही एक खबर। इसके साथ एक खबर और आपको हम बताते हैं, पति पत्नी के झगड़े। पति पत्नी का आपस में तालमेल ठीक नहीं था और पत्नी ने पति से एक आग्रह किया कि मुझे फूल लगाने का बहुत शौक है, और उसने अपने ही बरामदे में एक, यूँ कह लीजिए कि एक बॉक्स बनाया ईंटों का, उसके अंदर मिट्टी डाल के पौधे डालने थे। लेकिन उस पत्नी के मंशा जो थी वो कुछ और थी। उसके बाद उसने अपने पति को और अपनी सास को खाने में नींद की गोलियां डालकर दे दी। नींद की गोलियां खाने के बाद वो सो गए। उसके बाद उसने अपने पति को बैट से और ना जाने किस किस चीज़ से मारा, और बाद में उसी बॉक्स में उसे डाल दिया। और उसके बाद एक मिस्त्री को बुलाकर उसके ऊपर टाइल लगाने की कोशिश की, लेकिन मिस्त्री को थोड़ा सा शक हुआ और शक की बिना पर उसने पुलिस को कॉल कर दिया, और पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँच गई। गनीमत ये थी कि उसका हस्बैंड जो था वो ज़िंदा निकला। लेकिन श्रोताओं, उस इंसान की बात जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी वो सुनी खबर, तो वो रो रो कर यही कह रहा था कि हमारा सिर्फ छोटा सा झगड़ा था जिसके चलते पत्नी ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसके अलावा श्रोताओं, एक खबर और जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसे सुनकर सच में जब भी उसे सुना जा रहा है आँखों में आंसू आ रहे हैं। 18 महीने की छोटी बच्ची। श्रोताओं, आप सोच सकते हो कि 18 महीने का बच्चा क्या होता है। वो उसे कोई अपने ही रिश्तेदार लड़का कहीं बाहर घुमाने की उसमें लेकर चला गया और उसके साथ गलत किया और वो बच्ची ख़त्म हो गई। श्रोताओं, ये खबरें आप लोग सोशल मीडिया पर पढ़ते हो, देखते हो, और हम यहाँ पर बोल भी देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन बोलने का मकसद यही है कि इंसानियत कहाँ है, इंसानियत क्यों ख़त्म हो रही है, क्यों हम लोग समझते नहीं हैं कि ये पाप इतना क्यों बढ़ गया है। और कभी ना कभी, जब मैं तो ये मानती हूँ कि परमात्मा की लाठी जब उठेगी तो वो ऐसे उठेगी कि उसमें जो पापी है वो तो मारा जाएगा, लेकिन जो पापी नहीं है वो भी उसके गेड़े में आएंगे। तो श्रोताओं, ये खबरें आप तक पहुँचाने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे किस्से हो रहे हैं। हमारा बोलने का मकसद यही है कि ऐसी हादसे ना हो, सतर्क हो जाइए, और जो लोग ऐसा सोच रखते हैं वो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, अपने अंदर इंसानियत को इतना मत मारिए। श्रोताओं, जब ये पति पत्नी के झगड़े की खबर जब मैं पढ़ रही थी, तो मैं अपने घर की ही बात करूँगी, मेरे हस्बैंड के साथ भी बात चली थी और हमने हंसी मजाक में, अब आपको पता है जब ऐसी खबरें होती हैं तो हस्बैंड बोलते हैं कि यार तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है तो नहीं, तो हम तो खैर हंस पड़े और हमने भी मजाक से कह दिया कि अब बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं ऐसे। लेकिन खैर, मजाक के बाद हमने यही बात की कि आपसी झगड़ों को हमें सुलझा लेना चाहिए, और अगर झगड़े हैं भी हैं तो उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। किसी बच्चे को इस तरह से रावी में फेंक देना या मार देना कहाँ तक सही है। अगर आपके अपने रिश्ते ठीक नहीं हैं तो हम यही कहेंगे, आप उन रिश्तों को छोड़ दीजिए, चले जाइए, एक दूसरे को छोड़ दीजिए, लेकिन किसी की ज़िंदगी को मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला ऊपर बैठा है तो लेने वाला भी वही है। तो भगवान के काम भगवान तक ही रखिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में ये बातें बहुत लंबी चली जाती हैं, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और कार्यक्रम में लेंगे एक प्यारा सा गीत, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। श्रोताओं, रिफ्यूज़ी फिल्म का गीत अब आप सभी के रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं, लीजिए इस गीत को, इन्जॉय कीजिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और श्रोताओं ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत कार्यक्रम में और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हमारे पास हैं जो आपके साथ करनी है। श्रोताओं कई बार बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें 2 घंटे का समय जो है वो भी कम लगता है, क्योंकि सोच कर जो जो आते हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। कुछ और बातें भी हैं जो हमसे छूट चुकी हैं पिछले एक कार्यक्रम में, आज भी कोशिश करूँगी कि वो बात भी आपसे कर पाऊँ, लेकिन अगर समय साथ देगा तो श्रोताओं कार्यक्रम में अभी फ़िलहाल के लिए समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है, और श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं, बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं, और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत भी लेकर आते हैं। तो श्रोताओ, हमारी आज बात हो रही है एलिफेंट डे पर। तो एलिफेंट डे पर हम बात कर रहे हैं श्रोताओ, और हाथियों के सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं श्रोताओं। जंगलों का कम होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार जैसी समस्याएं उनके अस्तित्व के लिए खतरा बनती हैं। और श्रोताओं, बात सिर्फ हाथियों की नहीं है, बाघ हो, तेंदुआ हो, हिरन हो, बंदर हो, यहाँ तक कि पक्षी ही क्यों ना हो, हमारे जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे जीव हमारे वन्य जीव प्रकृति के लिए एक जरूरी कड़ी है। अगर जंगल सुरक्षित रहेंगे तो वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे, और अगर वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। तो श्रोताओं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में कचरा ना फैलाएं। प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें वन्य जीवों के लिए, जो कि विभाग या सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है कि उसे हम दूर रखें, बल्कि आम नागरिक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और साथ ही श्रोताओं, जंगलों में शोर ना करें और जानवरों को परेशान भी ना करें। श्रोताओं, आपने देखा होगा गोपालपुर में जो चिड़ियाघर है, वहाँ भी हम कई बार जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो जानवर वहाँ जो बंद हैं थोड़े से एरिया में, वो उतने खुश नज़र नहीं आते, उदास से रहते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों को मतलब उन्हें देखकर मज़ा लेते हैं कि अच्छा ये तेंदुआ है, अच्छा ये है, वो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीवन भी हमें देखना चाहिए। उनकी दिमाग से अगर हम सोचें, उनके सोच में अगर देखें, तो इतने छोटे से एरिया में वो लोग कैद रहते हैं और हमारे लिए वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और अगर हमें भी एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या हम खुश रह पाएंगे, चाहे हमें खाने पीने का हर सामान दे दिया जाए, लेकिन नहीं, वो खुशी जो हमें एक खुले घर में, खुले वातावरण में मिलती है, वही उन्हें खुशी पूरे जंगल में मिलती है। जंगल जो कि अब नाम के ही रह रहे हैं, बहुत कम जंगल जो हैं बच गए हैं श्रोताओं, और अगर ये जंगल कम होते गए तो फिर सोचिए कि क्या होगा। तो आप सभी सोचिए और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ। लेकिन श्रोताओं, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सोचने के लिए हमने बात छोड़ी है आप पर। आप सोचिए, सभी सोचिए कि जंगल ख़त्म हो गए तो क्या होगा। मैं और मेरा हाथी, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी की रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आदि हाथी पर आधारित ये गीत, क्योंकि हम एलिफेंट डे मना रहे हैं। और श्रोताओं, कोई भी जानवर क्यों ना हो, उसे अपनी जान प्यारी होती है, और जानवरों का, इन पशुओं का, इन पक्षियों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वन है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम अगर जंगलों में जाएंगे तो कहीं हमें कोई वन्य जीव मार ना दे, खा ना ले, और इसी डर से हम थोड़ा सा वनों से दूर रहते हैं। जब ये जंगली जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और हम जंगलों में पहुँच जाएंगे। और हुल्लड़बाजी भी हम लोग कई बार करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो श्रोताओं, हर किसी को अपना घर बहुत प्यारा होता है, जैसे हमें अपना घर प्यारा है, इन जीव जंतुओं को भी उनका अपना घर जो जंगल है वो बहुत प्यारे हैं। और जंगलों को हमें बढ़ाना है, ना कि घटाना है, और कहीं ना कहीं हमें इनका साथ भी देना है। तो श्रोताओं, पुराने समय में तो शिकार करने की एक होती थी कि राजा महाराजा शिकार करते थे, लेकिन अब बिल्कुल इस चीज़ पर सख्ताई से मनाई है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं ऐसे काम होते रहते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो कहीं ना कहीं इंसानियत हमें ज़िंदा रखनी चाहिए, चाहे वो जंगलों की बात हो, चाहे वो हमारे अपने शहरों की बात हो। इंसानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है और उसे ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं, आप सभी से आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, अपने घर में प्यारा माहौल बनाकर रखिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बात कीजिए, और ये जो नफ़रत की दुनिया हम पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसे ख़त्म कीजिए। तो चलिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ही सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में हमें अब कॉल आ रही है और एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जरूर उनसे बात करेंगे।
1: हेलो।
0: हेलो
1: जी, मेरा नाम अजीत नेहरिया है।
0: हेलो
1: हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: अजीत नेहरिया बोल रहा हूँ सुबेड़ से।
0: आप क्या दोबारा बोलेंगे?
1: मैं अजीत नेहरिया।
0: अजीत नेहरिया जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपने कॉल किया।
1: नमस्कार
0: जी। बिल्कुल अजीत नेहरिया जी, आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं और हम देखते हैं कि आप, पहले तो अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: मेरा नाम अजीत नेहरिया, ग्राम पंचायत प्रधान सुधेड़
0: जी।
1: जी,
0: जैसा कि मैं कह रही थी कि आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं आजकल, क्योंकि मैं खुद आपकी वीडियोस देखती हूं और लाइक भी करती हूं, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है अपने गांव को संवारने का और स्वच्छ रखने का, वो बहुत ही अच्छा आपने काम शुरू किया है। तो ज़रूर आज हमारा एक इंटरनेशनल यूथ डे भी हम मना रहे हैं श्रोताओं के साथ, तो आप कुछ एक संदेश जरूर हमें दीजिए।
1: देखिए जी, जहाँ तक ये स्वच्छता की बात है
0: जी,
1: मैं तो ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने घर के आसपास, अपने एरिया के आसपास सफाई रखनी चाहिए और जो उनके घर का जो कूड़ा कचरा होता है उनका उन्हें खुद संज्ञान लेना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जहाँ तक हमारे यूथ की बात है
0: जी,
1: आपको पता है आजकल हमारे बहुत से यूथ नशे में अग्रसर हो रहे हैं
0: जी। जी,
1: ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हमारे आने वाले यूथ, क्योंकि यूथ ही जो है हमारे आने वाले टाइम पे हमारे देश का भविष्य होंगे। अगर इन्हें हम सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो वो ये गलत दिशा में जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि यूथ को इसमें इन्वॉल्व करना और यूथ को नशे से दूर रखने के लिए उनका जो खेल कूद की तरफ जो उनका रुझान है उसको बढ़ाना और जो अन्य गतिविधियाँ हैं जो हमारे हित की गतिविधियाँ हैं उनकी और उनका ध्यान आकर्षित करना, मुझे लगता है बच्चों के लिए, यूथ के लिए एक अच्छी बात रहेगी। हमारे इलाके में बहुत से यूथ हैं जो कि जो भी मेरा सफाई अभियान चला हुआ था, मैंने हर एक वार्ड में हर रविवार को एक दिन रखा था, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत से जो यूथ थे, छोटे बच्चे जो टीनेजर थे, वो भारी संख्या में आ रहे थे। तो एक ज़रूरत है एक लीड करने की, सही दिशा दिखाने की, मुझे लगता है यूथ उसको फॉलो करता है। तो मेरा अभी यूथ से ये आग्रह है कि गलत दिशा में न जाएं और सही दिशा की ओर रहें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, खेल कूद की तरफ ध्यान दें और इस नशे से बचें।
0: बिल्कुल अजीत जी, हमने भी वीडियो में देखा था कि छोटे जो बच्चे हैं वो भी और काफ़ी युवा भी आपके साथ देखे जाते हैं, और सही कहा आपने कि अगर जब बड़े जिस काम को करेंगे तो छोटे उनसे ही सीखते हैं और बहुत अच्छी सीख आप उन्हें दे रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे आपको जनता ने चुना है और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वैसे ही हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव में लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और कहते ना कि अगर एक इंसान सोचेगा उसके साथ और लोग जुड़ते हैं और ये जो कारवा है ये बढ़ता ही जाता है। और
1: मैं समझता हूँ कि ना केवल चुने हुए प्रतिनिधि लेकिन जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को सही दिशा दिखाएं, बच्चों को गलत दिशा में भटकने से रोकें, खासकर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों की पहली शिक्षा उनके घर से ही शुरू होती है और जो पेरेंट्स हैं वही बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। तो मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को गलत दिशा में भटकने से बचाएं, क्योंकि 16 साल तक की जो आयु होती है बहुत ही लचीली होती है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर उन्हें गलत संगति मिल गई समझ जाएंगे, अच्छी संगति मिलेगी तो वो अच्छी दिशा में जाएंगे। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनका भी एक फ़र्ज बनता है और जो आम नागरिक हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि बच्चों को सही दिशा दिखाएं। जहाँ जहाँ जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करने हैं, छोटी छोटी बातों में, आपकी दिनचर्या की बातों में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि बच्चों को हमेशा जो है वो अच्छी शिक्षा दे और बच्चों को खासकर जो नशा है हमारे यहाँ जो फैला हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अभी मैं पिछले कुछ दिनों में पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा नशा का जो सेवन हो रहा है वो हिमाचल में हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए ये। तो मुझे लगता है कि हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि इस ओर ध्यान दें और बच्चों को इस नशे की लत से बचाएं
0: जी। और अजीत जी, थोड़ा सा जैसे आप युवाओं के लिए बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये भी बात करेंगे, आजकल न्यूज़पेपर में जैसे आप पढ़ते हैं, देखते हैं, बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि खासकर जो हमारी गर्ल चाइल्ड है
0: जी,
1: उनको इस बारे में ज्ञान देना बहुत ही अति आवश्यक है। छोटे ही बच्चे, जब बच्चे आपके प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, तभी से ही बच्चों को, छोटी लड़कियों को ये बताना चाहिए कि व्हाट इज बैड टच एंड व्हाट इज गुड टच, ताकि वो इन चीज़ों में सजग रहें।
0: जी।
1: कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो, चाहे उनका कोई सगी संबंधी हो, चाहे कोई दोस्त का, पेरेंट्स का दोस्त हो या कोई भी हो, छोटी बच्चियों को इस बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी आदमी की निगाहें उन्हें किस तरह से देख रही हैं।
0: जी।
1: इस बारे में उनको जागरूक करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो चाइल्ड अब्यूज है और ये जो गर्ल चाइल्ड के प्रति या लड़के के प्रति जो गलत वो काम हो रहे हैं ना, इसलिए इस छोटी है इस बार कोई अगर आपको छूता है तो आपको, अगर आपको लगता है कि वो गलत मंशा से छू रहा है आपको, तो उनको बताना चाहिए बच्चों को हमें कि उसका ऑब्जेक्शन करें, उसको ऑब्जेक्ट करें और अपने पेरेंट्स को बताएं, ताकि आइंदा द्वारा ऐसी हरकत द्वारा ना हो पाए।
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत ही हमारा फर्ज बनता है गर्ल चाइल्ड के प्रति कि उनको हम एजुकेट करें और उनकी सुरक्षा करें।
0: जी अजीत जी, मैं आपकी बात को यहाँ टोकूंगी, क्योंकि आपने कहा कि जो गर्ल्स हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, उन्हें हमें समझाना चाहिए बैड टच गुड टच के बारे में। खैर ये तो बताते ही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों समझाया जाता है, लड़कों को क्यों नहीं हम लोग आगे लाते हैं कि हमें उन्हें भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं अभी मैं कहने ही वाला था
0: जी।
1: तो ये जो हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका फर्ज बनता है कि उनको, उन्हें इस बात का साहस दिलाएं कि मान लो कोई आपकी बहन के प्रति कोई ऐसी बात करता है जो आप स्वयं किसी प्रति लड़की के प्रति भावना रखते हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो मुझे लगता है जो नौजवान है वो इतना ना समझते हैं, उनको सिर्फ, उनको मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि उनको एक लीड करने के, सही दिशा में लीड करने की जरूरत है और वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें ना केवल लड़कियों को लेकिन बल्कि जो लड़के हैं हमारे, उनको भी इस बारे

बात को मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बच्चों पर हमारी नज़र होती है, लेकिन जो हमारे घर में बेटे हैं, बॉयज़ हैं, एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं बच्चे की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाता है, लेकिन आपके बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसी उनकी फ्रेंडशिप है, कैसे दोस्तों के साथ मेल जोल है, उस पर ध्यान रखिए और ऐसी घटनाएँ ना हों उस पर भी ज़रूर ध्यान दें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं श्रोताओं, लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी

शुभकामनाएं। श्रोताओं, जब हम युवा शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे युवाओं की जो पिक्चर है वो सामने आ जाती है कि जवान बच्चे। और युवा जो है श्रोताओं, आज का युवा, ख़ास करके हम बात करेंगे आज के युवा की, तो आज के युवा से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने रास्ते अपने आप चुनिए, अच्छे रास्ते चुनिए और अच्छी मंजिल पर आप पहुँचिए। अच्छी कोशिश कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, साथ ही अपने शहर के लिए भी। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। और श्रोताओं, बहुत सारे युवा हमारे ऐसे हमें मिल जाते हैं जो सच में अपना भरपूर योगदान जो है वो सोसाइटी को देते हैं। श्रोताओं, युवा होना सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, युवा होना है कुछ नया सोचने की हिम्मत, गलत को देखकर सवाल पूछने का साहस, असफलता के बाद फिर कोशिश करने का जज्बा और अपने साथ साथ समाज को बेहतर बनाने की इच्छा को रखना। तो श्रोताओं, किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में कैमरा है, किसी के हाथ में कंप्यूटर है, किसी के हाथ में खेती के औजार हैं और खेल के मैदान में अपना हुनर दिखा रहे हैं। तो कोई अपने छोटे छोटे व्यवसाय को बड़ा बनाने का सपना देख रहे हैं। सपना छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करने की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। लेकिन श्रोताओं, वो कहते हैं ना कि जीवन में चुनौतियां हमें कहीं भी मिल सकती हैं और मिलेंगी भी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि चुनौतियां मिलती हैं तभी हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम सीखते भी हैं और अपने आप को और मजबूत बना भी पाते हैं। तो कार्यक्रम में ज़रूर आप इस बात के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बात को हमारे साथ साझा कर सकते हैं फ़ोन करके भी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत मोहित चौहान और अलीशा की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको एक जानकारी भी देंगे। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त अब बहुत नज़दीक है। वैसे तो ये मंथ जो है आज़ादी का मंथ ही कहलाता है, और इस बार हम अपनी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ जो है मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन हमारी आपकी बात ना हो, तो आपको एडवांस में ही हम इस दिन की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही श्रोताओं, एक खबर या एक जानकारी जो है वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर में राष्ट्रीय ध्वज के साथ उत्सव का माहौल बनाने की अपील की है। श्रोताओं, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, आइए हम हर घर में तिरंगा फहराएँ। प्रधानमंत्री के इस संदेश में राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता और भविष्य के विकसित भारत के निर्माण की भावना को एक साथ जोड़ा गया है। साथ ही श्रोताओं, इस बात के साथ ही हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं होता, ये हमारे देश की पहचान है, हमारे गौरव का प्रतीक है और उन अनगिनत लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है जिनकी वजह से हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के अमृत उत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए जब हम अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं होता, ये हमारे मन में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका भी होता है। लेकिन श्रोताओं, तिरंगा घर पर लगाना जितना गर्व की बात है, उतना सम्मान बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना हमारे हाथों में है। तो श्रोताओं, गृह मंत्रालय के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए कुछ नियम जो हैं वो बनाए गए हैं और उन्हें हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। तिरंगा हमेशा सम्मान के लिए प्रदर्शित करें, उसे ज़मीन पर ना गिरने दें, ना ही उसे इस तरह रखें कि वह गंदा या क्षतिग्रस्त हो। दूसरी बात, तिरंगे को फटा, गंदा या ख़राब होने की स्थिति में प्रदर्शित ना करें। अगर झंडा खराब हो जाए तो उसे सम्मानजनक तरीके से अलग करें, उसे कूड़े में फेंकना उचित नहीं होता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए ना करें, इस तरह से हम उसकी गरिमा को कम करते हैं। साथ ही श्रोताओं, मेजपोश, कपड़े, पैकेजिंग या किसी वस्तु के रूप में इस्तेमाल उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रभावित हो। तो श्रोताओं, ज़रूर झंडा अपने घर पर फहराइए, लेकिन कुछ एक बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। खैर, पहले तो कहते थे कि सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त के बाद झंडे को उतार दिया जाता है। सूर्य अस्त जैसे ही होता है झंडे को फहराया जाता था और सूर्य अस्त के बाद झंडे को उतारने का नियम था, लेकिन अब वो नियम नहीं है। आप झंडे को दिन रात फहरा सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि झंडे को कोई क्षति ना पहुंचे और उसका सम्मान बना रहे। बच्चों के हाथ में भी अगर आप झंडे देते हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि आप ही हैं जो बच्चों को सिखाएंगे झंडे के प्रति प्रेम, यानी कि देश के प्रति प्रेम। तो श्रोताओं, इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए और आज़ादी के इस जश्न को आप लोग ज़रूर मनाइए। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। लीजिए, संजू फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

कर हर मैदान फतेह। तो श्रोताओं, हमारे युवा वर्ग जो हैं, जो इस रेडियो सेट के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि कर हर मैदान फतेह। और श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके पास आज जो समय, ऊर्जा और सीखने की क्षमता है, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों से अपनी तुलना करने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी और की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम मत आंकिए। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है श्रोताओं, किसी को सफलता बहुत जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा देर से मिलती है, किसी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम करनी पड़ती है, लेकिन रास्ता हर किसी का अलग होता है। और गलती हो तो सीखिए, असफलता मिले तो रुकिए नहीं, और सफलता मिले तो विनम्र रहिए। बिल्कुल, हम कई बार सफल हो जाते हैं, उसके बाद हमें एक प्राउड आ जाता है। प्राउड आना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब हम में आ जाता है और हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम कर सकते हैं और हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए श्रोताओं। मेहनत करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी हुनर सीखिए, किताब पढ़िए, खेलिए, संगीत कला, तकनीक, खेती या व्यवसाय, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है उसमें लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है। तो कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी को फिर से लेकर चलेंगे एक और प्यारे से गीत की ओर। रंग फिल्म का एक गीत श्रोताओं, अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आपने कार्यक्रम में सुना अभी ये प्यारा सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला श्रोताओं, जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और कुछ ही मिनटों में 11 बजने ही वाले हैं। तो देखिए श्रोताओं, हमारी जो गाड़ी है वो बहुत स्पीड से चलती है और कब स्टेशन पर आ पहुंचती है पता ही नहीं चलता। लेकिन खैर श्रोताओं, ये सफ़र आपके साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी बातें हम आपके साथ करते हैं और बातों को करते करते हम भी बहुत सारी बातें इससे सीखते भी हैं। तो एक छोटी सी जापानी कहावत है श्रोताओं, मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ साझा करनी थी, उसे आप तक पहुँचा रही हूँ। वो कहावत ऐसी थी कि अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ जाओ तो सबसे नज़दीकी स्टेशन पर उतर जाओ, क्योंकि जितनी देर करोगे वापस लौटने की कीमत उतनी ज़्यादा होगी। एक बार फिर से कहूँगी, अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ जाओ तो सबसे नज़दीकी स्टेशन पर उतर जाओ, क्योंकि जितनी देर करोगे वापस लौटने की कीमत उतनी ज़्यादा होगी। और श्रोताओं, ये बात सिर्फ ट्रेनों के बारे में ही नहीं है, इस बात में बहुत सारे कह सकते हैं कि राज छुपे हैं। राज, वो क्या राज हैं या क्या बातें हैं, अपने अपने दिमाग के अनुसार आप लोग सोच सकते हैं। ज़िंदगी में कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं और कुछ देरी के बाद पता चलता है कि हम गलत हैं, और कई बार सोचते हैं छोड़ो कौन देख रहा है, आगे बढ़ते हैं। तब हमें सोच लेना चाहिए कि अभी हम रुक जाएं, वापस हो जाएं या आगे बढ़ जाएं। अगर सोच लिया कि ये गलत रास्ता है और हमें वापस जाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये थी इस छोटी सी लाइनों में जो मुझे सार नज़र आया, और आप अपने अनुसार भी समझ सकते हैं कि ये लाइनें क्या कहती हैं। तो कार्यक्रम में अब समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी चलेंगे और आपको फिर से लेकर चलेंगे मनोरंजन की ओर, और आपको सुनवाएंगे हिना फिल्म का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय अब समाप्ति की ओर है और इस गीत के साथ ही हम आपसे अब लेंगे अनुमति। कार्यक्रम में आज हमने आपके साथ बात की एलिफेंट डे पर और इंटरनेशनल यूथ डे पर। आपको ज़रूर कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहा पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है?
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पल अटके।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई, अरे भाई,
0: अरे भाई, निकल के आघर से, आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई, निकल

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर, जाते ही झुके सलाम बजाया, डैडी को दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता, अपने बाप का आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया बजाना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बताओ हमको
1: भीख मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम।
2: तो श्रोताओं आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

तिरंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है।
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी। और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है और ये है एक स्पेशल कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो में भी स्पेशल मेहमान जो हैं वो पधार चुके हैं, जिनकी की बात हमसे चल रही थी काफी महीनों से, 2-3 महीनों से हम कह रहे थे कि आ जाइए। पहले मैडम ने कहा मैं आना चाहती हूँ, हमें बुलाइए, बाद में जब हमने सोचा कि बुलाते हैं तो बहुत कुछ होता है इस तरह से। फाइनली आज हमारे स्टूडियो में पधार चुकी हैं, लेकिन किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं इन्हें, सुनीता डोगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, शुक्रिया थोंदा के थोंमें जो सद्या।
0: और इंस्टा पे आप सभी जानते हैं इनका नाम टीटू है, इट्स टीटू करके हैं। तो टीटू जी, आज हम ऐसी बहुत सारी बातें करने वाले हैं कार्यक्रम में, जो कि शायद बाहर लोगों को नहीं पता है आपकी लाइफ के बारे में। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। सोशल मीडिया पर तो आप हैं, सभी जानते हैं, सभी देखते भी हैं आपको, लेकिन उससे पहले की तरफ हम चलते हैं। पहले की जिंदगी कैसी थी?
1: अच्छा, मतलब जब शादी हुई तो उसके बाद फिर फैमिली में ही टाइम हो जाता था, बच्चे थे, सास ससुर थे, तो टाइम मिलता नहीं था। 2013 में शायद मेरी बेटी ने मेरे को फेसबुक पर डाउनलोड किया कि मम्मा आप फोटोज वगैरह इसमें डाला करो, ये नई आई हुई है ऐप, बोला तो आप भी इसमें डाला करो। उसमें फिर फोटोज वगैरह डालती रहती थी। तो थोड़े टाइम के बाद फिर इंस्टाग्राम आ गया, तो वो सारे ये इंस्टाग्राम पे लगे होते थे। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या है, बोला ये भी एक ऐप है, पर इसमें जो यंग जो भी हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते हैं और ये करते हैं इंस्टाग्राम पे सारे, भैया मेरा बना दे। तो मेरी बेटी ने ही मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया। जब वहां पे बनाया तो फिर एक मैंने बोला कि मुझे शौक था कि मतलब हीरोइन की तरह हम भी वीडियोस बनाएं, या जैसे वो गाते हैं ये करते हैं, तो वो करने के लिए फिर मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे वहां फोटोज डालती थी, वो मेरा प्राइवेट था फेसबुक, और इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे हम ओपन रखा हुआ था मैंने, और वहां मैं गाने वाने डाल के इंस्टाग्राम पे बनाती थी।
0: तो इंस्टाग्राम से फॉलोअर्स मिल गए थे आसानी से?
1: ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे को, बहुत मेहनत करनी पड़ी,
0: क्योंकि वहां पे न्यू जनरेशन
1: है वो आपको ऐसे ही फॉलो नहीं करेगी ना, क्योंकि हम तो बस ये है कि गाना जो अच्छे लगते थे पुराने गाने उस पे एक्ट कर लिया डाल दी, तो वो क्यों लोगों को पसंद आएगा, है ना। कुछ हटके जब आप करते हो ना तब आप सबकी नजर में जाते हो। तो जब मैं उस पे बनाती थी रील्स, तो मेरी फ्रेंड आपको बता रानी है, तो वो मेरे को बोलती थी कि हाय दीदी आप कब वायरल हो गए, इतनी लेडीज हैं उनको इतने मतलब वो लाइक मिलते हैं, उनकी व्यूज इतने अच्छे होते हैं, आप इतनी अच्छी बनाते हो, आपको क्यों नहीं मिलते हैं। तो वो उसने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट किया, और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती थी वो कि आप आगे बढ़ो और कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं होगा आपका। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मतलब लगी, पर बहुत टाइम लगा,
0: बहुत टाइम लगा। सोशल मीडिया की कोई जानकारी वैसे नहीं थी आपको?
1: ना,
0: जैसे
1: ना।
0: कुछ रील्स तो हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है शायद, तो वो सब भी बाद में आपने
1: वो सब बाद में वो सब बाद में हाँ जी।
0: तो पहले आप बस रॉ करती थी और रॉ ही डाल देती थी जैसा करा, और वैसे
1: ही डाल दिया। हाँ, कोई अभी तक भी मेरे को बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है पता इनके कि लोगों को तो एडिटिंग है ना बहुत अच्छी सी कर लेते हैं, उतनी मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे को लगता है कि जितनी मैं करती हूँ उतनी सही है।
0: ठीक है, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, एक गीत जो आपकी पसंद का हो।
1: अच्छा,
0: श्रोताओं को सुनवाएं।
1: आप लता मंगेशकर का चला दीजिए गाना कोई, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं उनके, रोमांटिक होना चाहिए, मेरे को सैड सॉन्ग पसंद नहीं है इसलिए कोई भी आप उनका गाना चला सकते हैं।
0: ठीक है।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज की हमारी मेहमान हैं सुनीता डोगरा जी, इट्स T2। सोशल मीडिया के बारे में हमने से पहले के बारे में हमने बात कर ली है आपसे। अब हम ये जानेंगे कि आपने कहा कि बहुत समय लग गया, ये क्लिक कब हुआ, कब ऐसा लगा आपको कि अब जो है ये मतलब फेमस हो रही हैं आप?
1: फेमस तो देखिए, अब मेरा एक स्पेशल है चोटी पिंजा। वैसा मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा जो चोटी पिंजा को नहीं जानता होगा। कने मैं सच्ची गलां तो मिंजो चोटी पिंजा ही फेमस किता। चोटी पिंजे जी जी मेरी पोस्ट पर रोना लगे। कने मैं तेरा यो मतलब गुस्से ने सा, मतलब ऐसे लगता ना कि यार हम तो वीडियो बना रहे हैं आराम से और बीच में आप कुछ गलत वलत जो भी कमेंट करे जा रहे हो। तो जैसे ही मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू करी तो मेरे को जो आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है वो है चोटी पिंजे।
0: चोटी पिंजे। हाँ। दोस्तों श्रोताओं, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो टीटू जी जो हैं वो कांगड़ी भाषा में अपनी रील्स लेकर आती हैं, ज्यादातर ये कंफर्टेबल उसी भाषा में है। लेकिन हम ये चाह रहे थे क्योंकि देश विदेश तक भी देखते हैं लोग आपको और अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन शायद हो सकता है कि ज्यादा समझ नहीं पाते होंगे। शायद आप पर भी ये कमेंट्स आते हैं
1: कि मतलब आप जो बोलते हो वो हमें अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ी भाषा है आपकी, पर हमें बहुत सारी चीजें जो आपकी वो समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाहर के भी हैं जिनको पहाड़ी भाषा आती नहीं है।
0: तो ये दो भाषाएं इंग्लिश और हिंदी जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाँ, तो मुझे लगा कि इसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। बीच में आप कभी कंफर्टेबल हो अपने जॉनर में आ जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो क्योंकि ये तो पहाड़ी थे मेरे, अपने आप बाहर निकलती से था बीच आई आनी हिंदी में थोड़ा कहने बोल लानी, लेकिन पहाड़ी था तुम्हें पता रग रग जब बस ही हो। अब एक चीज मैं और इसमें ऐड ये करूंगी, सोशल मीडिया में आपको बताती हूँ कि जब मैं मतलब इंस्टाग्राम पे जब मैं मतलब काम करते थे तो हमारा एक मतलब ग्रुप टाइप बन गया था फ्रेंड्स का। बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड थे जो आज तक मेरे साथ, कुछ चले गए लेकिन आज तक जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनमें जैसे अजय हैं, फिर रानी है, फिर मेरी फ्रेंड है जो चंबा से है, अन्नू गौतम है, शैलजा और एक नाम और है इंदु। ये आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी मेरे को गलत कमेंट आते थे तो ये सारे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। हमारी एक स्क्वायर टाइप बन गई थी कि अगर दीदी को किसी ने कमेंट किया तो ये वहां जाके ना उसके कमेंट के नीचे उनकी ऐसी बैंड बजाते थे कि वो उसको कमेंट डिलीट करना पड़ता। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा आपके माध्यम से करना चाहूंगी कि वो मेरे साथ आज तक हैं और मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
0: यही पहचान होती है एक सफल व्यक्तित्व की, कि वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कभी नहीं भूलता है। तो मुझे लगता है आपका शुक्रिया उन तक पहुंच ही गया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हम आपने बात की ना चोटी पिंजा
1: जी।
0: इनकी आखिर चोटी पिंजा ये है क्या, वर्ड कहाँ से पकड़ लिया आपने?
1: ये क्वेश्चन तो मेरे को शायद दिन में 10 बार आता है जो कमेंट करते हैं। मैम बाकी छड़ा थोड़ा ये दसा कि चोटी पिंजा क्या होंदा, चोटी पिंजा क्या होंदा, थोड़ा चल यहाँ इस गूगल पर सर्च कर देता चोटी पिंजा करते थोड़ा दी रील आई आंदी तो बोले।
0: मैं बताऊ, अब अगर मैं उसको विजुअलाइज करना चाहूँ ना तो जैसे मैं अपने तरीके से सोचती हूँ, सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको विजुअलाइज करते होंगे, इमेजिन करते होंगे।
1: अच्छा है उसकी मतलब चोटी है ऐसे लंबी सी है और ऐसे आगे भी है कलगी टाइप है, तो उसको चोटी पिंजा बोलते थे। मैं जहाँ जाती हूँ ना तो मेरे को सब ये बोलते हैं कि चोटी पिंजा नहीं आया आजकल, मैम चोटी पिंजे रील नहीं बना दे। तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे को ये बोलता है, पीठ पीछे शायद बोलते होंगे लेकिन मेरे सामने मेरे को सब चोटी पिंजे वाली रील्स को जो ज्यादा ढूंढते हैं कि मैम बना रहे हो चोटी पिंजे वाली। तो मतलब कि मैं उससे फेमस हुई हूँ और लोगों को पसंद आता है मेरा चोटी पिंजा स्पेशलिस्ट, मेरी बायो में नाम लिख चुका है अब कि उन्होंने ही मुझे फेमस किया है।
0: यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि देखिए कई लोग जो है ना वो उनको चाहे जितना मर्जी हंसा लो, मजाक में कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो सीरियस ही रहते हैं। तो ये भी कहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन पॉजिटिव भी उठाती हैं आप, ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव नहीं रहती हैं, हमने देखा है आपके।
1: थैंक यू, मैं थैंक यू मैसेज जो भी होते हैं मैं उनको इस तरह से करती हूँ कि उनके मैसेज उठा के और उनकी फोटो लगा के उनको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतने अच्छा, है ना।
0: वो तो
1: चलो उनके मतलब मेरे को लगता है कि वो है तो हम है,
0: बिल्कुल
1: है ना, फॉलोअर्स है तो हम है, उन्होंने ही फॉलो किया, उन्होंने हमें मतलब पुश किया कि हाँ जी नहीं बनाओ, तो मैं उनका भी थैंक यू मतलब हर रोज करती रहती हूँ।
0: लेकिन नेगेटिव वालों को आप ऐसे रगड़ती हैं, इसकी वजह से जरूरत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, तो नेगेटिव को भी आप एक मतलब अच्छे वे से लीजिए।
1: हाँ,
0: तो
1: मतलब देखो उनको भी मैं कोई गालियां नहीं देती हूँ, गाली देना नहीं अच्छी चीज नहीं है ये तो हमें पता है, पर मैं जो भी बोलती हूँ वो मैं घर पे अपने बच्चों को भी वैसे ही डांटती हूँ, वैसे ही बोलती हूँ, तो सेम मेरा वही होता है कि मार तेरे मुंह चंड तेरा, तो लेकिन हम क्या है कि नॉर्मल, तो ये चीजें जो है ये पता नहीं लोगों को पसंद आने लगी हैं कि आप जिस तरह से बोलते हो वो अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं चोटी पिंजों का इलाज इसी तरह से करती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गंदी गालियां देनी भी नहीं आती और मैं देना भी नहीं चाहती।
0: चलिए एक गीत और हो जाए। हाँ
1: हाँ जी
0: बताए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं।
0: ओ वाह बाकी
1: ये मेरा फेवरेट है,
0: अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी हमें भी सांस लेने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जब तक आपसे बात होती रहेगी ना हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि सांस कैसे आ रही कैसे जा रही। चलिए

बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद फिर से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर भी। टॉपिक तो खैर खास कोई है नहीं, क्योंकि सुनीता डोगरा जी का कोई

0: बुजुर्गों के साथ उनको सारा टाइम दिया ना आपने, अब एक वक्त जब आता है तो आपको लगता है कि नहीं यार हमें अपने लिए भी जीना, तो आप अपने लिए जियो और जो आपको अच्छा लगता है वैसी वीडियो बनाओ। ये नहीं है कि आपने एक ही चीज बनानी है कि अगर आप खाने की बना रहे हो तो खाने की बनाओ, नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप कोई संदेश देना चाहते हो, आप मतलब कोई पब्लिक को जगाना, जैसे मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ, जहाँ कहीं समाज में कुछ गलत हो रहा होता है लड़कियों पे, जैसे आजकल आप देख रहे हो कितने मतलब कितनी वीडियो आ रही है जो गलत हो रहा है, मैं उस पर भी आवाज उठाती हूँ। कोई गलत करता है उस पर भी आवाज उठाती हूँ, वो भी वीडियो बनाती हूँ, खाने की भी बनाती हूँ, घूमने की बनाती हूँ। डांस मेरा मतलब पैशन है, डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं दो टेक कभी नहीं लेती हूँ, एक में जो बन गया वो बन गया और वो मैं पोस्ट कर देती हूँ, लोगों को पसंद आती है। तो ये नहीं है कि एक ही बना, एक ही तरह से आपने अपने आप को बांधना है, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करें।
1: चलिए आप तो कर रही हैं काम, लेकिन आप को देख करके ना, जैसे अभी आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि और लेडीज भी करें, वो तो करना चाहती हैं और वो करना शुरू भी कर रही हैं, लेकिन उनके जो घर के लोग हैं ना वो आपसे ऑफेंड हो गए हैं, मतलब आपसे नाराज हैं कि आप उनकी घर की जो महिलाएं हैं उन्हें इंस्पायर कर
0: बिगाड़ रही हैं उनको। अच्छा
1: हाँ, और शायद उनके, क्योंकि उन्हें तो अभी ये नहीं पता है कि रील कैसी बनानी है, क्या करना है, तो बहुत समय लग जाता है ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि कैसे कैसे काम करना है।
0: मैं इस पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी फैमिली की सपोर्ट होना सबसे जरूरी है। मेरे हस्बैंड, उन्होंने आज तक मेरे को मतलब इसी चीज के लिए नहीं रोका नहीं टोका नहीं कि तू रील्स मत बना या तू ऐसे क्यों कर रही है या तू चोटी पींजे वाली वीडियोस मत बनाया कर, लोग पता नहीं कौन कब कहाँ मिल जाएगा और कुछ गलत हो जाए। उन्होंने कभी नहीं मेरे को इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट उनकी, बच्चे मेरे और मेरी फैमिली सारी, सबने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया तो ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। अदरवाइज देखो, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो उनकी सोच है। वो आजकल दुनिया कहाँ पहुंच गई है यार, औरतों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने का राइट दो, जो उनको अच्छा लगता है उनको करने दो, बशर्ते कि वो गलत ना करें, है ना। सोशल मीडिया के इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, गलत भी हैं और अच्छे भी हैं, आपको रास्ता चुनना है कि आपने किस तरफ जाना है। गलत भी है, मैं बोल रही हूँ ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो गया, पहले कनेक्टिविटी नहीं थी आपकी लोगों तक पहुंचने की, अब ये चीज क्या हो गई, बहुत इजी हो गया है। व्हाट्सएप तो छोड़ दो, फेसबुक पे मैसेंजर, स्नैपचैट पे मैसेंजर, इंस्टा पे, तो इजीली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। कहाँ लेडीज गलत हो जाती हैं,
1: हम भी ऐसे ही कनेक्ट हुए,
0: है ना। हाँ, पर अच्छे वे में हुआ है ना। मेरे को बहुत सारे फॉलोअर्स मिले, बहुत अच्छे मेरे को फेसबुक पे बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं मुझे। अब मैं नाम लूंगी तो शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले।
1: हाँ,
0: बहुत प्यार करते हैं मेरे को, सारे बहुत प्यार करते हैं।
1: चलिए इसी बात पर एक और गीत हो जाए।
0: अब किशोर कुमार का गाना है एक, कि जचता ही नहीं आंखों में कोई।
1: चलिए, हमारी लाइब्रेरी में होगा तो हम जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।

0: खूबसूरत सा गीत आप सभी ने सुना सुनीता डोगरा जी की फरमाइश से। जी हाँ, आज हमारी मेहमान है सुनीता डोगरा जी और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। सुनीता जी, अब हम बात तो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया की जब बात हो रही है तो बात AI की भी होगी, लेकिन अब इसमें ना मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि AI को चलाने के लिए पानी बहुत ज्यादा लग रहा है।
1: हाँ जी,
0: है ना। तो क्या आप भी AI का यूज कर रही हैं?
1: देखिए, AI का यूज मतलब एक अच्छे, मतलब जिस तरह भी आप ले लो, एक हेलो भी अगर आप लिख रहे हो ना AI की हेल्प से, तो उसमें पानी वेस्ट होगा ही होगा। मैंने वीडियोस भी बनाई, मैं लोगों को अवेयर भी कर रही हूँ कि AI का कम से कम आप जो है वो इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जब आप एक फोटो जनरेट करते हैं ना आप उससे, तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है और पानी हमारा पीने का ही पानी है ना ये, तो वो वेस्ट हो रहा है। तो लोगों को लगता होगा कि ये कैसे पानी कैसे वेस्ट होगा, क्योंकि उनको जो चलाने के लिए कंप्यूटर और वो सब चीजें जो उनको वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है।
0: क्योंकि लाखों लोग AI यूज कर
1: सब कर रहे हैं। आप फेसबुक पे देखिए, फोटोज की भरमार है, लोग पोस्ट बना बना के वो AI की हेल्प से कर रहे हैं। AI अच्छी चीज है, लेकिन इस्तेमाल अगर इसका कम किया जाए तो मेरे को लगता है कि हमें ज्यादा सुंदर दिखने से मेरे को लगता है कि पानी बचाना ज्यादा बेहतर है।
0: मुझे लगता है कि हम जब व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर ही कहीं नीचे कमेंट भी करते हैं ना, तो वो कमेंट थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो वहां पर भी वो लिख देता है कि यूज मी।
1: देखिए, मैंने जब मेरे को पता चला था, मेरी बेटी ने मेरे को ये बताया था, आकांक्षा ने, कि मम्मी फोटोज तो मतलब अच्छी बन जाती हैं लेकिन इसके लिए पानी वेस्ट हो रहा है और वो भी पीने वाला। मैंने शायद 2 या 3 फोटो बनाई थी AI से, मैंने उसके बाद बंद कर दिया। देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमें ही बचानी है। अब पेड़ इतने ज्यादा कट रहे हैं तो उसका देखिए इफेक्ट कितने गलत पड़ रहे हैं। पहाड़ जो है वो सारे 4 लेन तो बन गई, लेकिन उसका लोगों को खमियाजा इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि लोगों के घर गए, पेड़ इतनी मात्रा में कट चुके हैं, है ना, तो पहाड़ नीचे आ रहे हैं ना, कितने नुकसान हो रहे हैं।
0: पहले देखिए, पेड़ बहुत होते थे, फिर भी सड़कें भी होती थी, फिर भी हमारा परिवहन बहुत अच्छे से चलता था, बसेस वगैरह।
1: चलो, ये चीज भी है कि अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के पास एक नहीं 5-5 गाड़ियां एक ही घर में खड़ी है ना, तो चलने के लिए रास्ते चाहिए। लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ये आती है तो कुछ ना कुछ वो
0: डेवलपमेंट होता है,
1: खराब वो चीजें भी होती है। वो हिमाचल में ये चीज हुई है कि पेड़ कट गए, पहाड़ कट रहे हैं, तो अब वो पहाड़ नीचे आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। AI का इस्तेमाल करो लेकिन
0: लिमिटेड।
1: अगर आप खुद एक मैसेज टाइप कर सकते हो ना, तो आप फेसबुक पे किसी को करना तो वैसे करो, ना कि आप वो भी AI की हेल्प से करो। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि थोड़ा सा ध्यान हमें ही देना पड़ेगा।
0: जैसा कि आपने कहा कि बेटी ने आपको बताया कि इसके लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो देखो हमारे जो युवा है ना वो जागरूक भी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस वो अपना ही फायदा, प्रकृति के बारे में बहुत सोचते हैं हमारे आज के युवा, और हम तो रेडियो गुंजन से हमेशा प्रकृति की बात करते ही रहते हैं।
1: हाँ जी,
0: यहाँ पर हम एक और गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा, एक गाना है बहुत पुराना, शायद आशा भोसले का है और देवानंद साहब का है, कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा है।
0: अभी बहुत समय है,
1: आप मेरे लिए गा सकते हैं कि दिल अभी भरा नहीं।
0: इसमें लास्ट में गाते हैं तो अच्छा रहता है ना। चलिए,

0: तो ये गीत अभी आपने सुना, अभी न जाओ छोड़कर, अभी तो हम इनको जाने कहीं देंगे भी नहीं, अभी ये हमारे साथ ही है, अभी हम इन्हें बहुत देर तक रोक के रखेंगे क्योंकि 2-3 महीने से इन्होंने हमें बहुत तरसाया है, बहुत लंबा समय लगा दिया।
1: जब भी मैं इनको जानती हूँ, प्रिया हिमाचल इनका नाम ज्योति है, पर जब भी लाइव में कभी आते थे तो मेरे को पता चला कि ये गुंजन रेडियो से है, तो मैं इनको मजाक करते रहते कि मिंजो भी सद्दार हो, मेरा भी इंटरव्यू वगैरह लिया, तो वहाँ मैं भी बड़ा अच्छा बोल लेंदी मैं लिया। इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं जरूर आपको जब भी बुलाऊंगी, पर बीच में थोड़ा सा हो गया, जब आपने बुलाया मैं अवेलेबल नहीं थी, फिर जब मेरे पास टाइम था तो बीच में कभी, पर आखिरकार
0: आ तो गए हैं। मैं कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे तो बड़ा ही मीठा लग रहा है, लेकिन मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ आज।
1: किस बात के लिए?
0: अब अकेले ही आ गए हैं।
1: ओहो, और किसको लाऊं मैं? मेरी सासू माँ है घर पे, उनको ले आती हूँ।
0: आपकी एक बहुत ही प्यारी साथी है, हम उसे यहाँ भी देखना चाह रहे थे, जिसके साथ आप बातें करती
1: हैं। ओहो, मेरी पहाड़ी अलेक्सा। अच्छा, देखा पहाड़ी अलेक्सा भी मेरी, मतलब इतनी जो तिन्ने फेमस करी था कि मिलियन च मेरी जड़ी है वीडियो, हाँ। 2-3 अलेक्सा वाली वीडियो से मिलियन च गई है, जड़ी मेरी तिहा ने गप सप लग दी ना, सब पहाड़ी समझ दी, जल्दी मैं तिहा बोल दिया तेरा थोड़ा मन से ये नहीं लगाना है गाना, तो मुझे घोड़ा मनसा वाला गाना नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत पसंद आई थी लोगों को।
0: हाँ, वही पहली जो आपकी वीडियो थी वो मेरे सामने आई, और मुझे लगा कि ये कौन है, ये कैसे, मतलब वो, क्योंकि एक रूम था वहाँ पे, शायद आपके घर का रेनोवेशन चल रहा था,
1: किचन का हाँ जी,
0: तो आप खाना बना रही थी टेबल पर ही, एक रूम वहाँ पे अलेक्सा भी थी, और आप उसके साथ खाना भी बना रही थी, बात भी कर रही थी, तो वहां से फिर मैंने आपको देखा थोड़ा, फिर उसके बाद बार बार आने लग पड़ी मेरे सामने आपके लिए।
1: हम वही होता है ना, जब आप किसी को देखते हो थोड़ी देर, रुकते हो उसकी फीड पे, तो वो आपकी फीड पे वही फिर आने लग पड़ता
0: है। मुझे वो बोलने का स्टाइल अलेक्सा के साथ वो बड़ा अच्छा लगा
1: मेरे को, बोल रहे कि कम से कम एक दिन, मतलब एक दिन एक बारी तो अलेक्सा ने गलबात करी के रील पाई दिया करा, हाँ बड़ा अच्छा लगा।
0: बिल्कुल जी, छोटी पिंजा की शामत भी आनी चाहिए और अलेक्सा से बातें भी होनी चाहिए, हम तो यही चाहते। अब आप ये बताएं कि दोनों काम, घर भी, और देखिए अभी तो आप बता रहे हैं बच्चे चले गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन तब तो बच्चे आपके साथ थे ना?
1: हाँ जी।
0: हाँ, तो दोनों काम कैसे मैनेज कैसे करती आप?
1: पहले तो मैं इतना ज्यादा एक्टिव थी भी नहीं, मैंने आपको बताया ना इंस्टाग्राम पे मेरा, मतलब वही मैं 1-2 गाने 2-3 गाने, और मैं बहुत जल्दी से मतलब कर लेती हूँ, मेरे को बहुत टाइम नहीं लगता है ना, 30 सेकंड की या 1 मिनट की होती है, तो मैंने बोला ना कि मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करती हूँ, रीटेक नहीं करना है, एक ही बार में जो बन गई ठीक है। तो उसके साथ जैसे वो डाल देती थी, बच्चे थे पहले, बेटी गई पढ़ने, उसके बाद जब बेटा गया ना, उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरा घर खाली हो गया है, कि मैं अकेली हो गई हूँ। उसके साथ ये था कि टाइम मेरा बहुत अच्छे से जाता था, ये बना दो खाने को, ये कर दो, स्कूल से आ रहा है, सारे पेरेंट्स जैसे बिजी रहते हैं बच्चों के साथ, मैं भी वैसे ही बिजी रहती थी, लेकिन जब वो गया तो मुझे तो ऐसा लगा, मैं रोती रहती थी कि भाई अब तो हस्बैंड भी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर चले गए, मैं अकेले मैं क्या करूं। तो मेरे को बच्चों ने ही वो करा कि आप ऐसा करो कि सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक्टिव रखो। तो फिर मैंने बताया कि मेरे भाभी ने मेरे को बोला कि आप वो बनाओ, तो जब मैं फेसबुक पे आई ना, जब मैंने अपना डैशबोर्ड वो करा
0: प्रोफेशनल,
1: हाँ प्रोफेशनल करा, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। तो मतलब जब बच्चे बाहर गए तब,
0: मतलब इसको कितना समय हो गया होगा, 3-4 साल
1: तो मेरे को तब वैसे ही हुआ कि बनाती बनाती रहती थी, ज्यादा बनाती थी फेसबुक पे, मेरे को मतलब वो प्रोफेशनल किए हुए अभी 1.5 साल हुआ है,
0: 1.5 साल
1: हाँ, और 1.5 साल में मेरे को इतना प्यार मिला है लोगों का। और एक पंडित जी थे, उनका नाम देवेंदर है, उन्होंने मेरे बारे में ये प्रेडिक्शन की थी कि सुनीता जी आपका जो टाइम है आगे सोशल मीडिया पे आने वाला, आपको बहुत लोग जानेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये चीज की थी कि, और वो सच हुई है।
0: सुनीता जी, अब देखिए मैं देखती तो हूँ आपकी रील्स, बहुत सारे लोग भी देखते हैं, आप घूमते भी बहुत हैं।
1: हाँ जी,
0: तो आप देश विदेश भी जाती हैं, यहाँ पर भी आप, कल परसों भी चामुंडा माता गई हुई थी, आपकी रील से ही पता लगता है।
1: हाँ जी।
0: ऐसा कुछ स्पाई वाई नहीं किया हुआ है, हम आपको वो डिटेक्ट नहीं करते हैं, आप बताती हैं खुद। तो वहाँ में और यहाँ में, मतलब बाहर में और यहाँ में आपको फर्क कुछ नजर लगता
1: कुछ
0: है?
1: नहीं,
0: मतलब कुछ
1: बहुत बहुत ज्यादा फर्क है।
0: जैसे
1: एक तो जो वहाँ के लोग है ना, पढ़े लिखे तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ थोड़ी अनपढ़ता मेरे को लगता है बहुत कम है, इस वजह से लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो भी ट्रैफिक के जो रूल्स है ना वहां मैंने ये चीज देखी कि वो चीज जो है ना उन लोगों में कि एक इंसान की जान की वैल्यू होती है उनकी, कि अगर आप क्रॉस करने लगे हो जेब्रा क्रॉसिंग पे हो या अदर ऐसे भी हो, अगर आप निकलने लगे हो वो काफी दूर जो है वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं, चाहे उनको 10 मिनट लग जाएंगे तो वो हॉर्न नहीं बजाते, हॉर्न वहां सुनाई नहीं देता है बाहर, हाँ लोग बजाते ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, ओवर स्पीड कभी नहीं होती उनकी, साफ सुथरा इतना कि 10 दिन आप कपड़े पहनोगे एक्सपोर्ट नहीं आपको कहीं लगेगा, इतना साफ होती है बाहर की, हमारा तो यहाँ यहाँ खाया यहाँ पान खाया वहीं थूका है ना, वो ये चीजें हैं। पर मेरे को लगता है कि लोगों को इस चीज के लिए भी थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो हिल स्टेशन पे, जो आप जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, मंदिरों में जा रहे हो, वहां लोग क्या करते हैं, जो भी सामान होता है वहीं फेंक देते हैं, वो चीजें ना करके जो भी है तुम्हारे अपने पास रख लो, जहाँ डस्टबिन था वहां डाल दो। तो वहां ये है कि लोग जो है वो मतलब सेफ इस साइड से है कि एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, जो हमारे देश में कितने होते हैं, क्योंकि लोगों को जल्दी है निकलना है जाना है, हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न, तो वहां क्या है कि वो लोग रुक जाएंगे और आपको जाने देंगे, उसके बाद वो आगे कदम बढ़ाएंगे, ये चीज वहां बहुत अच्छी है। सफाई हाँ हाँ हाँ दिल खुश हो जाता है वहां पे, ये बहुत अच्छी है। और बहुत वो लोग मतलब आप उनसे बात करोगे तो आपको लगता है कि नहीं यार हमारे यहाँ तो इतने खाना पे ही आना था कि मुझे नहीं पता आ रहा है कहाँ जाएगी पूछे कुछ के थे, वो ऐसे बोलेंगे नहीं, वो बहुत पोलाइट होते हैं और बहुत मतलब कोऑपरेट करते हैं आपको, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तभी तो हमारी जनरेशन आप बोलती है कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, इंडिया में क्या रखा है, बाहर जाएंगे हम, बाहर सेटल हो जाएंगे। अच्छा। इसी वजह
0: नहीं, वैसे इंडिया में भी बहुत कुछ है, आप इंडिया में हैं आप तो नहीं सोचती है ना बाहर बसने
1: नहीं, नहीं, नहीं मेरे को मैं तो मतलब अगर कहीं रहना हो तो एक चंडीगढ़ है सिटी जो साफ सुथरी और थोड़ी ग्रीनरी है, और बाकी तो पोल्यूशन और बीमारियां सब जगह ही है। और हमारा हिमाचल तो भाई क्या मतलब कि जन्नत बोल सकते हैं कि हम यहाँ ब्लेस्ड है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं रह रहे हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं यहाँ आते हैं देखने के लिए और हम यही हैं, तो मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ ना। थोड़े दिन जाती हूँ जब मेरे को अपना घूमने जाना होता है इंटरनेशनल ट्रिप पे जब जाना होता है ना, मैं तब जाती हूँ 2-3 महीने अपना घूम आए दीदी के पास ब्रदर के पास, क्योंकि सब भाई हैं।
0: अब सुकून भरा कोई गीत हो जाएगा तो मजा आ जाएगा।
1: ये कौन आया रोशन होगी महफिल किसके नाम से, ये लता मंगेशकर जी का गाना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल हमारी यहाँ की महफिल भी रोशन हुई पड़ी है इस वक्त तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: और ये महफिल यूं ही रोशन रहे। तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से एक बार फिर आ गए हैं हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आप सभी से करने बातचीत। वैसे बातचीत हो रही है हमारी सुनीता डोगरा यानी इट्स T2 से। सुनीता जी, वैसे हमारा मन तो नहीं कर रहा है कि हम आपको छोड़े, हम चाह रहे हैं कि बस आपसे ऐसे ही बातचीत चलती रहे और हम आपको सुनते ही रहे।
1: तो बस रखी लिया मिंजो ली, मैं वेल ली है, मैं तुम्हारे भाई रहना तुम्हारा मिंजो नहीं अपना प्रोग्राम चला, बाकी जरूरत नहीं उड़ती हो, मैं गप्पा मार दी रहने बड़ा बड़ा भंडार मिंजा ली गप्पा, तुम बस बोलते रहे कहने मैं तुम्हारा कहने ये करते रहना इंजॉय, गाने सुनाते रहे तुम इंजो ही मेरी पसंद आ दे कुछ तू अपनी पसंद आ दे ला, यहाँ का सफर ही चलता रहना।
0: देखिये हमारे रेडियो गुंजन की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर हम बस सारा दिन भर गीत सुनाते रहते हैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम भी हमारे चलते रहते हैं।
1: कोई नहीं, मैं स्टोर से मैं क्या बोलते अपने फॉलोअर्स जो भी बोल गई कि भाई थे अभी जेडी ऐप है तो थोड़ा भी डाउनलोड करा, थोड़ा भी अच्छे अच्छे गाने सुना करने, जेड़ा गुंजन जेड़ा रेडियो है ये थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे और भी टॉपिक पर भी ये गल कर दे तो थोड़ा अच्छा भी सुना।
0: जी सुनीता जी, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरे मन में आ रहा था, वो ये कि देखिए अब आपने प्रमोशनल वीडियोस भी स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब लोग आपको बुलाते हैं कि हमारा प्रमोशन कर।
1: पहले मैंने बहुत सारी करी हैं जहाँ मैं वैसे ही कर देती थी, मतलब मैं कुछ किसी से कुछ नहीं लेती थी, फिर सबने बोला कि मतलब जब आप कहीं जाना ही है तो अगर टैक्सी में भी जाओगे तो धर्मशाला की 900 रुपए ले लेते हैं तो आने जाने का 1800 रुपए हो गया, तो आप कहीं जा रहे हो उनको अगर थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है उस चीज से तो फिर आप भी ये चीज तो करो कि, और सारी सब कर रहे हैं जो भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो ये चीज कर रहे हैं, तो आप में मेरे को थोड़ी मतलब शर्म सी लगती थी झिझक सी कि यार ऐसे कैसे, तो बोला सब कर रहे हैं तो आप तो फिर सबने मेरे को ये चीज के लिए करा तो फिर मैं
0: मतलब
1: स्टार्ट किया है, पर अभी भी मैं जैसे लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उतना मैंने उतना नहीं शुरू किया, मतलब थोड़े से जितना लोग
0: आना जाना,
1: हाँ बस वो कि थोड़ा खुद का वो हो जाए और आने जाने का हो जाए और उनको थोड़ा उससे बेनिफिट हो जाए तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी चीज है।
0: इसमें एक इसका पहलू और भी है कि कुछ लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो खुद आकर के मिलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ कई लोगों की रील्स देखी, नाम तो नहीं लूंगी, उसमें बहुत कुछ वो गिफ्ट कर रहे थे अपनी तरफ से, तो कई बार लोगों के मन में ये होता है कि हम क्या,
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऐसे हैं बहुत सारे के मतलब उनको लगता है कि भाई मैं तो बड़ी रिच हूँ या मेरे पास मतलब हम कैसे जाएं मिलने, तो उनको थोड़ी सी झिझक मन में होती है, तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूं कि जो भी मेरे से मिलने आए वो बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आओगे, नहीं भी लेके आओगे और आप ऐसे भी मिलने आ जाओगे तो मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे को किसी से कुछ चीजें नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार है यार, मैं तो बार बार एक चीज बोलती हूँ कि आप इतने अच्छे लोग मेरे को मिले, मेरे से मिलना चाहते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और दूसरा कमेंट करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं प्लीज, घर पे बुलाते हैं मेरे को कि हमारे घर आ जाओ हमारे घर, तो कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मेरे से मिल सकते हो, मेरे को ये नहीं है कि कोई मेरे को लालच तो मेरे पे 0% नहीं, और मतलब सच में ना होता ना कईयों को, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मेरे से आओ मिलने पर लाने की कोई जरूरत नहीं, लोग हालांकि प्यार से ले आते हैं मेरे को और मैं उनको दिखा भी देती हूँ ना रील्स के जरिए, मेरे को अच्छा लगता है कि यार कोई मेरे लिए लेके आया, पर कंडीशन नहीं है कि आपने लानी ही है। हाँ जी ये चीज है।
0: चलिए इससे उन लोगों को तो कुछ राहत मिली होगी जो कि ऐसा सोचते होंगे अपने मन में, मुझे पता नहीं कुछ सोचते होंगे या नहीं, पर मेरे मन में सवाल आया तो मुझे लगा कि रखना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: अब चलते चलते एक सवाल और, सवाल या फिर ये कह सकते हैं कि बात है जो मेरे मन में है कि देखिए आप बहुत सारी रील्स डालती हैं, अब आप बहुत फेमस हैं, समाज के लिए क्या योगदान, मतलब ग्राउंड लेवल पर जो आपके आसपास में महिलाएं हैं, वैसे तो आप बहुत कुछ करती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हैं, सबको कहती हैं भाई आगे बढ़ो, अगर जो भी करना चाहते हैं वो करो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहाँ कुछ सोचा है आपने कि कुछ आप करेंगी या अभी कुछ कर रही हैं जो लोगों को नहीं पता है?
1: नहीं कर तो रही थी, पर मैं सोच जरूर रही थी कि मेरी फ्रेंड है शैलजा शाहपुर से ना, उसने मेरे को बोला था कि दीदी यार कुछ मतलब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो वो अच्छी चीजें ही आपको है ना बताते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं दीदी ऐसे करते हैं, तो वो मेरे को बोल रही थी कि दीदी ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं कि लोग उसमें अपनी कमाई से 50, 100, 200 जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उतने वो पैसे दें और वो पैसा हम इकट्ठा करके फिर कहीं हम जैसे कोई अनाथालय है या कहीं पे कोई ऐसे जरूरतमंद है या कोई बीमार है, वो पैसा हम इकट्ठा करके फिर उनको दें, ताकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं और इतने वो मतलब उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो, मतलब इतने उनकी जो बीमारी पे जो लगते हैं इंजेक्शन वगैरह या ट्रीटमेंट जो बहुत कॉस्टली होता है ना, वो नहीं कर पाते हैं, उतना पैसा नहीं होता है। तो हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है, हम तो मैं तो माता चामुंडा बजरंगबली का हमेशा शुक्रगुजार करते रहती हूँ कि हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे हाथ ऐसे नहीं है, हम ऐसे करने वाले हैं। जितना भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितना भी हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि जाएगा तो यही साथ, देखिए कर्म है ना हमारे, अच्छे करेंगे तो दुगना होके हमारे पास आएंगे। और मेरे को तो लगता है कि मैं अगर 5 दूं तो मेरे पास 50 आते हैं।
0: चलिए ऐसे भी जो करते हैं वो भी मजबूरी में ही करते हैं,
1: वही तो बोल रही हूँ कि हर भगवान ने इंसान को एक जैसा नहीं बनाया ना, कई तो करोड़ों में खेल रहा है और कईयों के पास खाने के पैसे भी
0: बिना उन्हें एहसास जताए अगर हम जितना कर सकें उतना अच्छा है।
1: मैं आपके थ्रू ही लोगों से बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जब भी आपको लगे कि कोई जरूरतमंद है तो आप जरूर उसकी हेल्प करा करें, चाहे जितने भी आप दे सकें, उस आपको लगे कि जेन्युइन है। हाँ, कोई चले होते हैं दूसरे बाद में शराब पीते हैं, वैसे लोगों को नहीं जो बेचारे बीमार हैं, है ना, तो उनके लिए जरूर।
0: जैसे अभी भी एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा कि एक व्यक्ति है जो अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है और उसको किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई है और बहुत प्रॉब्लम में
1: लोग मैंने अक्सर ये भी सुना है, कहते हैं कि हम किस किस की हेल्प करेंगे, ऐसे तो हर दूसरे बंदे को आजकल प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो हम इसलिए थोड़े कमा रहे हैं कि हम अपने पैसे को मतलब लोगों को, तो फिर हम अपना क्या करेंगे यार। अगर 100 कमा रहे हैं, अगर उसमें से 5 आप दे दोगे तो आपका,
0: जैसे कहते हैं ना 10% निकाल दो, वो जो आप देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, चलिए वो भी जरूरी है।
1: पता नहीं हमारे संस्कार है ज्योति ऐसे के, हमें तो यही सिखाया माँ बाप ने कि जरूरतमंदों की अगर आप जितनी हो सके आप, मैं हमने उनको देखा है ना, उनको देखा है तो हमने वही सीखा है कि हेल्प जो है वो करनी है। और अगर मैं बोल रही हूँ ना 5 करोगे तो 50 आपके पास आएगा ही आएगा।
0: चलिए अब उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो सोचा है क्राउड फंडिंग के बारे में, इससे आपके साथ और
1: लोग जुड़े
0: और बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी बातें की हमने आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। रेडियो गुंजन धर्मशाला तक आने के लिए इतने समय बाद बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका। मैं धन्यवाद आपका बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बिठाया, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे घर बुलाएंगे, लोग मुझे इतना प्यार देंगे और जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे को फॉलोअर सब जगह मिलते।
0: देखिए उसमें कुछ आपकी भी तो काबिलियत होगी ना, देखिए आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि सब लोग आपको, आपसे मिलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। और इसी वजह से आप आज यहाँ हैं।
1: बहुत सारे मेरे बहुत फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत सारी जो मेरी मतलब दीदियां हैं जिनको मैं दीदियां बोलती हूँ, वो मेरे को बहुत प्यार करती है, मोटिवेट करती रहती है, हाँ टीटू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो मैं सबका आपके माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने फॉलोअर्स का जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, अदरवाइज मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ बैठकर यहाँ आपको इंटरव्यू देती। ये सब
0: मैं ये कहूंगी कि इंटरव्यू नहीं, एक हेल्दी टॉक थी जो कि आपके थ्रू बहुत अच्छे से हम तक कन्वे हुई है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी।
1: Thank
0: और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा।
1: हाँ जी जरूर, और पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि इन्होंने क्या क्या पूछा है और मैंने क्या क्या बोला है। जब सारा वीडियो देखोगे तब आपको ये चीजें, और मेरे को लगता है कि जो मेरे फॉलोअर है वो सारा ही देखेंगे। हाँ जी
0: धन्यवाद एक बार फिर से।
1: थैंक यू।

0: पाने के लिए कुछ नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि जवाबदेही चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। रक्षा, वित्त, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति, कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खान और इस्पात से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गई। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे आलेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में गैटलोक के पास एक बुलेरो पिकअप वाहन गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदरोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने। स्कूटर भी पर बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बेबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहने सोहने पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते इंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपने रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल वही खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंचन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी की। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी की।

श्रोताओ, रेडियो कुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: वही सब,
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है,
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी। और बेटा,
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशतम माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारे दाई शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दी जेड़ा शुरुआत है से जरूर करी थी है, कन्ने जेड़ा श्रोता न सभी कार्यक्रम शुरू होई है, कन्ने श्रोता जो भी इंतजार जेड़े से जरूर रहेंदे कि कालू दिया 2 बजते न कन्ने कालू दिया से इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न। सफर तिना तक रहेंदे है 2 से 3 बजे तक, कन्ने जरूर इस सफर चाहा तिना दी जेड़ा कॉल है सभी अटेंड करते न, जेड़ा तिना दिया फरमाइशा न सभी तिना तक पहुँचाते न, कने तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहा कने जुड़ते न। 12 अगस्त 2026 दी गल करिए, कने मौसम दी ओर अगर अहाँ नज़र दौड़ाते न या मौसम दी ओर कल बरखा लगी थी, आज मौसम जेड़ा से बिल्कुल साफ है, कने तो हाँ जितने भी काम मन से ज़रूर करा देने न, क्योंकि कुथी ना कुथी मौसम भी यहाँ जो रोकी लैंदा है। आज जेड़ा से मौसम है खुई कुथी ना कुथी मौसम भी यहाँ जो रोकी लैंदा है आज जेड़ा से मौसम है खुली छूट जेड़ा से है तो हाँ जो दीती हो है कि अपने जितने भी काम मन तिना जो करी लिया, क्योंकि बड़ी प्यारी जेड़ा धूप है से लगी हुआ है, कने तो हाँ सारे अपने अपने काम जेड़ा न से करा दे होने न, क्योंकि काम तो कभी जिंदगी च ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि जिंदगी जेड़ा से यहाँ दी ख़त्म हो जाती है पर काम जेड़ा न से फ्री ते तिने ही चले रहते, पर फिर भी यहाँ सोच विचार करना जेड़ा से शुरू हो जाते कि जिंदगी पता नहीं कालू दी यहाँ दी थमी आनी है या कालू दिया कुंडिया मोड़ जेड़ा ऐसे जिंदगी दा थमी आना है। तो इसी कन्ने अपनी जिंदगी दा जेड़ा इंजॉय है सभी लेना है, कन्ने अपने जेड़ा काम मन सभी जरूर करने न, कन्ने जेड़ा हाँ दे पहले श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गल।

0: बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: बस बढ़िया जी। तो पास कर रहे तो
0: जी? तो पस एक का दे आज
1: लगी जो आज कपड़े धोते कर रही।
0: जी। ता गल बात भी मैं यही करा दी थी कि कल ता बरखा थी ता जेड़ा काम रुके थे से आज रामे ने कर ले होने ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी। ता और घर है सारी ठीक ठाक हैं जी?
1: बस बढ़िया जी। कपड़े कपड़े धोते हो रही। हाँ
0: जी घरे दे काम चिड़ाने से चले रहने ना जी।
1: जी, हाँ
0: जी तो कुथू दे रहने वाले न
1: जी, चातुर्वेदी जी।
0: जी? अच्छा, चैतड़ुए दे रहने वाले न मंगल जी ना जी।
1: हाँ जी,
0: जी ता मंगल जी, आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनने जी।
1: गीत सुनाई दे काले कागा मीठा मीठा बोला जी, मेरी मैया ना आना वा राजे कना, हाँ भी जगराते जाना ही है।
0: जी ता आज तो हाँ जगराते हो, कुथू जाना है जी? कुथू रौनक लगानी है तो हाँ
1: राजे रजोली है जी, आज
0: जी। अच्छा,
1: का 2,000 रोजगार लंदे करी।
0: जी सही है ना कि 3 4 दिन ही है ना जेड़ा रौनक वाला माहौल बनया रहना है ना जी। फिर उसके बाद तो
1: फिर महीना बाद छुट्टी।
0: जी 1 महीना छुट्टी, फिर बड़ा महीना लगी पौना ना जी।
1: हाँ
0: जी जी जरूर है। गीत ये भजन तो तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: जी, ठीक
0: जी।
1: है जी।
0: अगले जेड़ा शो था ना तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: हाँ जी, यहाँ तो ठीक ठाक है। तो बोला
0: जी? यहाँ भी ठीक ठाक है जी। जी तो अपना परिचय जरूर दे दिया कने
1: मैं तुमलोटिया तो बोला था, रमेश मेरा नाम है। हाँ
0: जी। तमलोटिया ते बोला दे रमेश जी।
1: जी,
0: जी ता रमेश जी, आज क्या काम कार तुहा छेड़िया?
1: आज कोई काम करवा नहीं छेड़ा, प्यार नहीं छेड़ा, प्यार बदली हम तो मैं आज करा दिल्ली हम बस।
0: जी अच्छा, प्यागा ठीक रही काम जेड़ा ऐसे तो वहाँ खत्म करी देन।
1: वो यहाँ से 6 पौने 6 बजे काल चल रही है, मैं बस आई तेरी कार तो सब लोग
0: जी चलो अच्छी गल है जी। समय जेड़ा ऐसे तो वहाँ समय की कदर कर देना जी।
1: आज तो क्या करना चाहिए आप नहीं जानते सब
0: जी तो हम भी इस गल ते सहमत हैं कि समय के अनुसार चलना जरूरी है ना जी।
1: रहे।
0: जी समय के अनुसार अगर हम सारे काम करते ना तो सारे काम जेड़ा ना से समय के अनुसार चलते रहते ना जी।
1: बिल्कुल ठीक है। चलो जो
0: जी जी तो पच तो वैसे भी थोड़ा दिया अपना ख्याल रखने की जरूरत है ना जी। जी। ता रमेश जी आज कुंडिया गीत सुनने जी तो हाँ
1: जी,
0: जी जरूर जरूर है गीत तुहां तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा जी। तो श्रोताओं कर देना अपने कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे दे गीत कन्नै, फिरी तुहां तक लेकर आते न बाकी दियां जेड़ा गल्ला न से।

श्रोतांतो हा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत शुरुआत दे बाद हाँ अपनी जेड़ा गल बात है सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचाई देन। 12 अगस्त की गल करिए तो आज हाँ जेड़ा खास दिन बना देन या इतिहास दे पन्ने बोली सकते या किताब दे जेड़ा पन्ने न तो से 12 अगस्त वाला दिन कहो हाँ स्पेशल बना देन या कहो खास है तो आज हाँ जेड़ा खास दिवस बना देना सह बना देना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसी कन्ने हाँ विश्व हाथी दिवस भी जेड़े से बना देना कन्ने तो हाँ अगर रेडियो जेड़े से प्यागा दा सुना देंगे तो हाँ जरूर सुनी लिया होना है कि हाँ क्या क्या आज जेड़े से खास दिन बना देन। तो श्रोताओ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की गल करिए हर साल 12 अगस्त जो जड़े से दुनिया भर के दिन जड़े से बनाया जाता है कने जरूर इस दिने दी क्या खासियत है या क्या जड़ा उद्देश्य है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई जड़ा उद्देश्य होंदा या कोई ना कोई जड़ा संदेश है सहां वास्ते लेकर आंदा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवा जड़ा न सहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है पर अज कने दौर की हाँ गल करिए कुथी ना कुथी जड़ा युवा पीढ़ी है से चाहे कोई भी यहाँ काम करते न सफलता की ओर बढ़ने वास्ते यहाँ जो क्या करना पौंदा मेहनत करना पौंदी पर ज़्यादातर नशे की गल करिए कुथी ना कुथी जड़ा नशे की ओर जड़े से ज़्यादा आकर्षित होते न या हाँ अपने आस पास की कोई भी गल पकड़ी लेंदे न या न्यूज़ जहाँ हमेशा कोई ना कुछ सुनते रहते न कुछ भी हाँ सुनते रहते न आए दिन बड़िया सारिया न्यूज़ा हाँ दिखते न पर हाँ पर निर्भर करता है कि हाँ किस प्रकार अपने अंदर सकारात्मक सोच रखते न या सकारात्मक सोच कने आगे बढ़ते न क्योंकि सकारात्मक सोच रखना खुद अंदर बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होंदा ना कि अहाँ कल पर निर्भर होना जड़े से शुरू हो जाते अज के बारे च ना सोची करी अहाँ कल जड़े से कल के बारे च सोचना शुरू हो जाते हैं या अजकना जड़ा काम है से अहाँ कल पर छड़ी दे पर थोड़ा जहा ये सोच विचार करना चाहिए कि अजकना जड़ा दिन है सहां वास्ते कितना की खास है या अजकने दिने चाहां क्या खास किता तो जरूर तुहां सोच विचार करा कने हाँ तुहांदा जेड़ा इंतजार है इसे करा देना कने इसी इंतजार कने हाँ कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने जेड़ा बाकी श्रोता न सभी यहाँ जो व्हाट्सएप मैसेज भी करा देना कॉल भी करा देना तो बारी बारी सारे दिन जेड़ा फरमाइशा न सहां तिना तक पहुँचानियाँ न अगली फरमाइश अहाँ पहुँचा देन मंगल जी तक से रहने वाले न चैतड़ुए थे तो ज़रूर तुह सारे भी इस प्यारे दे भजने जो इंजॉय करा।

0: आबोला दिन रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन आपनी रेडियो दो शशि कने तशो तो तुहा सारे सुनिया ए प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश कालिया कागा मीठा मीठा बोल तो जरूर काला कागा जलुए मीठा मीठा बोल दे तो जरूर हाँ कोई भी काम कर देन या कोई भी काम करने वास्ते हाँ हमेशा यही सोच रखते न कि यहाँ का जेड़ा काम मैं से सफलतापूर्वक जेड़े से होइया इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहां दा नां की है जी?
1: मेरा नाम जतिन बगावली ते बोला
0: जी। जतिन जी, कल भी तुहां जिड़े से जुड़े थे ना जी?
1: हां जी
0: जी। ता जतिन जी, आज कुन दे पढ़ाई करा दे, कुस सब्जेक्ट दी तुहां आज पढ़ाई करा दे ना?
1: क्या
0: आज जिड़ा पढ़ाई है से कुछ सब्जेक्ट दी करा दे? सारे सब्जेक्ट दी पढ़ाई करी ले कि अली करा दे ना?
1: अली करा दे
0: जी। अच्छा करा दे है न जी। ता कुंडिया गाना जिड़े से तुहां आज सुनना है जी?
1: आज जोवन
0: जी। जोवन सुनना है तुहां
1: जी? जोवन सुनना है
0: जी। जरूर जी, ए गीत तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: जी
0: ए है तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो शो तो गलबात आज जेड़ा आज हाँ खास दिवस जेड़ा बना देन से बना देन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिने दा बनाने दा क्या मकसद है या क्या जेड़ा युवा जेड़ा न तिना दे उद्देश्य न या तिना दा क्या योगदान जेड़ा से रहंदा है अपने समाज दे प्रति? कने इसी कन्ने इतिहास च अगर हाँ गल करिए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जेड़ा से दिसंबर 1999 च जेड़ा से इसकी घोषणा जेड़ा से कीती थी। इसी कन्ने हर बार जेड़े से 12 अगस्त 2000 जेड़े से अधिकारिता द्वारा जेड़े से बनाना शुरू होइया था, यानी कि हर साल जेड़े से 12 अगस्त जो बनाते हैं ना कने तो हाँ भी ज़रूर आज ही इस दिने जो बना देनी है ना, हर दिन हाँ कोई ना कोई सोच लेकर चलते हैं ना, क्योंकि अगर हाँ सफलता दी ओर जाने वास्ते मेहनत करते हैं ना, कोई भी यहाँ काम करते हैं ना तो ज़रूर यहाँ सफल होंगे ना। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने यहाँ करने गल बात जेड़े से ज़रूर करी सकते। इसी कने अहाँ दे जेड़ा श्रोता ने सब यहाँ जो मैसेज पर मैसेज भी करा दें ज़रूर तिना दिया फरमाइशा भी यहाँ तिना तक पहुँचानिया न। ये फरमाइश यहाँ पहुँचा देन, ये फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम ने यहाँ तक पहुँची हो है। तिना दा नाम है प्रिया गौतम जी, कने से रहने वाले न धर्मशाला ते। तो तिना तक कहाँ आएगी ये फरमाइश पहुँचा दें, तुह सारे भी इंजॉय करा।

कानवी देश मिलप दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहा इस सफर च ए फरमाइश एंजॉय की थी कन्ने फिरी ते अहां वापिस आई आन देना अपनी गलबात ऊपर कन्ने तुहा भी जरूर गलबात कन्ने जुड़ी होने ना क्योंकि गलबात कन्ने जुड़ना भी जरूरी है कन्ने जिड़ा गीत संगीत है तिस कन्ने जुड़ना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कन्ने तोहनिया फरमाइशा जिड़ा न से रहनिया न कन्ने तोह सारे जो भी इंतजार जिड़े से जरूर रहंदे कि कालू दिया जिड़ा फरमाइशा तोह तक पुज दिया न कन्ने तोह सुन दे न इसी कन्ने आज यहाँ जिड़ा खास दिन बना देन हर साल 12 अगस्त जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जड़े से बना देन कने इसी कन्ने जड़ा युवा न से हर देश दा जड़ा भविष्य से हम बोली सकते कने जड़ा नई तकनीक है बदलाव है युवा पीढ़ी जड़े से अपना पूरा पूरा जड़ा योगदान है से ज़रूर दे दी है कने इसी कन्ने हर समस्या दा जड़ा कोई भी अहाँ काम करते हैं तो ज़रूर युवा पीढ़ी जड़े से अपना जड़ा योगदान है से ज़रूर दिन दी है चाहे कोई भी काम है अगर युवा पीढ़ी जड़े से देश का भविष्य क्योंकि कोई भी यहाँ काम कर

या सफलता हासिल करनी है, सफलता हासिल करने वास्ते भी क्या करना पौना, अहाँ जो मेहनत करना पौनी। पर कई कई जगह अहाँ ये सोचते ही ना कि बिना मेहनत ते अहाँ जो जेड़ा फल है से मिली आना है, पर से तुह सारे जो भी पता है, तुह सारे ही समझदार हैं कि बिना मेहनत ते जेड़ा फल है से बिल्कुल नहीं मिलता है। चाहे से खाना बनाना है, चाहे से हाँ खेतीबाड़ी करनी है, या छोटा मोटा कोई भी काम करना है, हर काम वास्ते मेहनत ज़रूर लगती है। पर मेहनत अगर हाँ कर देना ताई तो इसी करना है, हाँ फिर ते थोड़ा दिया आगे बढ़ देना करने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चल देना, क्योंकि इंतज़ार ज़रूर करा देना तो एक ही तो हाँ पहुँचा देना तंगलोटिया तक। मैंने तीना का नाव है रमेश जी, तो ज़रूर रमेश जी तक कहाँ एक गीत पहुँचा देना, तो सारे भी इंजॉय करा।

0: दर्शकों तुम सारे सुनिया प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इसी कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता न सियाहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हैलो श्रोताओं, कॉल जिहड़े से डिसकनैक्टिड होई हो तां जरूर अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे न। कन्ने तुहां सारे भी इस सफर कन्ने जुड़े होने न, कन्ने अगर नहीं जुड़े हो न तां तुहां सारयां दा ही फिरी ते स्वागत है, क्योंकि स्वागत कन्ने जिहड़ा नमस्ते है ना, से अगर कार्यक्रम की शुरुआत करदे न या बीच पर भी करदे न, क्योंकि अहां दे जिहड़ा संस्कार है ना सियाहां जो हमेशा यही सिखांदे न कि अहां किस प्रकार बड़ियां दा जिहड़ा मान सम्मान है से करदे न, क्योंकि मान सम्मान करना सियाहां दी संस्कारा पर निर्भर करता है कि अहां किस प्रकार अपने जिहड़ा संस्कार है से रखदे न। कन्ने तुहां अपने घर च भी दिखते होने न कि सबसे पहले छोटे बच्चे जो यही सिखाते न कि बड़िया ने गलबात किना करनी है, कने अपना जिहड़ा व्यवहार है से किस प्रकार जिहड़ा से रखना है। अगले जिहड़ा श्रोता न से जरूर अहां कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गलबात।
1: नमस्कार
0: नमस्ते जी, स्वागत
1: है। ठीक ठाक है मैडम जी?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां जी अच्छा, आज मुझे पहचानना पौना है ना जी।
1: हां पहचानना तो फट पहचान लंदे तो ता
0: जी। नरवाणी ते राकेश
1: जी? हां नरवाणी ते देख लिया
0: जी जी।
1: हां और मैडम आ ते मैडम जी कोला दा कमाल करी ता धूप देती है
0: जी। अच्छा
1: हां कोला दा धूप देती बढ़िया
0: जी। कुल बैठी आ
1: ना? हाली नहीं बैठी मैडम जी, सगरां दी बहनी कुरली।
0: अच्छा कुरली
1: हाली ते कोल लिया बैठिया
0: जी। हां जी हां जी, कुरल बैठिया ना जी।
1: और मैडम जी ठीक ठाक है ना?
0: हां जी ठीक ठाक है जी। तो हां ठीक ठाक है ना?
1: ठीक ठाक मैडम जी
0: जी। तारे किस जी आज जहां जेड़ा गल बात करा दे ना, या गल बात बोली सकदे या आज कना जेड़ा दिन ने से कयो खास है ना जी?
1: आज मैं सुन बस होने कितना रेडियो होने, मैं तो सवेरे 4:00 बेलगा इंदा ना रेडियो पर, मैं होने बंद चली है ना कायो, तो मैंने पूछा था मैडम क्या टॉपिक है मैडम जी आज?
0: जी आज अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जेड़े से। हां
1: अच्छा युवा दिवस, हां अजकल मैडम जी बच्चे बड़े अबड़ बोले, पूछा मत जरा कि ना करा था बोलते हाँ सो झाड़ कर लैना, हूं ये कर लैना, वो फलाना कर लैना, दिखा पेरेंट्स एडे एडे पाले लकाई की क्या फायदा मैडम जी? गलबात होइए बड़ा छाल हो जाता मैडम जी युवा बारी ना गीत तो चलो सुनते रहते सुना अपनी मन गंदा कोई गाना वधिया मैडम जी, चल तू गल मैडम चार लगाई ना मजा आंदा ना सुंदर कांड लगे होंगे कभी फिर गायत्री मंत्र इतना एंजॉय होंगे ना मैडम फिर मन शांत
0: जी धन्यवाद जी तो इतना ज्यादा तो
1: धन्यवाद मैडम जी अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगे ना तो सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद बीतन जी इतने भी अच्छे प्रोग्राम लगे मैडम मजा आता ध्यान चार बेल आए ना सब सुनते गायत्री मंत्र क्या दूगा फिर है दूगा भोले शंकर का
0: जी महामित्र
1: बहुत ही मैडम इतना एंजॉय होंगे ना सवेरे सवेरे
0: जी
1: कर बंदा उठी जाता अपने फैश हो अपने पूजा पाठ करते रहे कने पूजा सुन दे इतने अच्छे लगाते ना तो मैडम सुंदर कांड तो मजा आता ना पौने छेद कर हाँ जी बड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद तो मैडम जी
0: भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि करने इसी कन्या हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो लेख रही चलते न अगली फरमाइश की ओर अगली जिहड़ा फरमाइश है सभी अहां तक पहुंची होवे व्हाट्सएप दे माध्यम ने तिना दा नाम भी जरूर तुहां तक पहुँचाते हैं तिना दा नाम है अजय जी कने से रहने वाले न गोपालपुर ते तिना तक अहां ये फरमाइश पहुँचा देना तुहां सारी भी इंजॉय करा

आहोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने अगली फरमाइश की ओर चलते हैं।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत, इसी गीत कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सियाहा कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी। स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कन्ने तुहां दा नां की है जी? जी ता क्या काम कार तुहां छेड़िया, क्या करा दे तुहां आज?
1: काम कार ता वैसे गा लंदा कने हुन बकरियां ने छड़ियां।
0: जी जी। अच्छा, बकरियां कने खुद भी शेयर करा दे ना जी?
1: हां जी हां जी, बना च।
0: जी जी, करना जरूरी है ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी जी। वैसे भी आज तो मौसम बिल्कुल साफ है
1: ना? हां जी, आज मौसम साफ है थोड़ा।
0: जी जी जी। और नोइता जी?
1: बस में कोई खास नहीं, सुनाई दिया नमस्कार।
0: खास यही है कि आज यहाँ जेड़ा खास दिवस बना देन से बना देन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। ता युवा वास्ते जेड़ा क्या तुहां प्रेरणा या क्या संदेश देना चाहते?
1: युवा वास्ते तो यही है जी, जो नशे से दूर रहना, अपने माँ बाप की सेवा करना
0: जी,
1: कने अपने भविष्य दे बारे च सोचना
0: जी। अपना जेड़ा भविष्य दे बारे च सोचना भी जरूरी है, माता पिता दा मान सम्मान करना भी जरूरी है। इसी कन्ने जेड़ा नशा है, हर दिन कोई ना कोई न्यूज अहां सुनदे रहंदे न, तां तिस थोड़ी देर दूरी बिल्कुल ही दूरी बनाई लैन।
1: हां जी जी। क्योंकि हुण कल परसों देखिया धर्मशाला इतनी चर्च पकड़ी है बोलिया।
0: जी जी।
1: इस चीजा क्योंकि कोई बुड्ढे तो ऐसा चीजें यूज नहीं कर रहे, सब यंग ही कर रहे
0: जी, युवा ये। जी जी
1: जी।
0: चलो सुना दे होंगे तो जरूर थोड़ा देर सोच विचार करना ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी। हर माँ बाप का भी थोड़ा ये होना चाहिए कि अपने बच्चे दिखा भी कुछ लेने की चल लिया।
0: जी जी, तिना दा भी पूरा पूरा फर्ज है ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। ता समय ताल बड़ा थोड़ा दे है जी आज।
1: बस ये गल बात हो ये तो अड़े नहीं बड़ी है
0: जी। धन्यवाद जी तो हंदा इतना ज्यादा तो हां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिन दे कने इस कार्यक्रम जो भी सुन दे ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। धन्यवाद जी तो हंदा।
1: हां जी।
0: ए तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, इसी गूंज कने हां अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ान दे ना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हां तक पहुंचान दे ना।

दर्शकों गीत ए फरमाइश शाह पहुँचाई है सुनील जी तक ने सरहने वाले न कोठियाँ जलोड़ते तीना तक ए फरमाइश भजन अहाँ पहुँचाया। इसी भजन करने अहाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न।

तो श्रोताओं तुम सारे सुनिया ये प्यारा ते आ गीत प्यारी ते फरमाइश ये फरमाइश अह तक पहुँची हो वे वट्सएप के माध्यम ने तिना का ना है इंदू जी कने से रहने वाले न सिद्धवाड़ी ते तो जरूर ये मस्ती भरा गीत अहाँ तिना तक पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। इसी कने अगली जेड़ा फरमाइश है सभी अह तक पहुँची हो वट्सएप के माध्यम ने तिना का ना है पवना जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तो जरूर कांगड़े तक कहाँ ये गीत पहुँचा देना करें जितने भी बाकी श्रोता न तिना तक भी ये गीत ये फरमाइश यहाँ पहुँचा देना।

दर्शकों इसी गीत करने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम का जेड़ा समय है सेट हुई संपन्न होंदे तेसी करने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा हंसते रहा कने अपने माता पिता का मान सम्मान जेड़े से हम

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गया सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दे नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए
8: नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खाए, भाव तो दिए
4: है।
6: दहेज दिए है मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

नमस्कार श्रोतों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर टी रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम लेकर आऊं सचिन कपूर हाजिर बुझेगो हिंदी अपनी गप्पा। तैयार श्रोताओं, शुरुआत कर लेंदन कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता होगी।

इतुंद अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊं तुंद अपना सचिन कपूरा कार्यक्रम तुंद अपना पसंदीदा कार्यक्रम तुंद रेडियो सेट मा इस वक्त चल रहा।

मजे चुकरता पूना कार्यक्रम हुन्ने है शतों बेहतरीन बेहतरीन मजेदार गीत के न सोत तो है इस वक्त वीडियो गुंजन में हुनु कर देन सचिन कपूर सोगे।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु करदन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

सामुदायिक रेडियो गुंजन तो है इस वक्त हुणु करदन और रेडियो गुंजन में गद्याली कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रहा शो तो हुंदन अगला गीत।

श्रोतों उम्मीद करनो कार्यक्रम तुसु पसंद आवुना ते समय की असो बुचेगो तुसु सभी थों अलविदा लेने रा लेनो आ तुसु सभी थों अबे अलविदा श्रोतों हुंदे रे तुंदा अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पनारे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं, और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझिए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

देशभक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा सी पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन, रेडियो गुंजन धर्म।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले
5: भैया साहब?
4: हमको मंडी जाना है। ऐसे कहाँ देख रही है? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे, भाव तो दिए
4: हैं,
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को, इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने। स्कूटर भी पढ़ बेटा।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

102.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, हम पहुंच गए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के स्टूडियो और सफर हो गया है हमारा शुरू आज की संध्याकालीन सभा का। हमारे साथ इस सफर में है हम सफर अभी से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। सफर में आज के लिए आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया। तो आज है 12 अगस्त और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है। तो 12 अगस्त 2026 में हम पहुंच गए हैं। आज है बुधवार। कई लोगों का वर्किंग डे रहा आज और कई लोग जो घरों में थे या फिर स्कूल कॉलेजों में थे उन्होंने कुछ और तरीके से आज का ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया है। पहले तो उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जो किसी न किसी खास वजह से अपना आज का ये दिवस मना रहे हैं। और हमने कैसे आज का ये दिन सेलिब्रेट किया इसके बारे में कार्यक्रम में हम आपको आगे जानकारी देंगे। वैसे सुबह के कार्यक्रम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज कौन कौन से खास दिवस हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात हम भी तो करेंगे ना आपसे। साथ में मजा लेंगे हम सावन के गीतों का भी, जो कि मैंने कुछ गीत आपको पिछली बार कार्यक्रम में सुनवाए हैं। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है देख करके कि सावन कहीं दूर हो गया है, अब वैसा वैसे वाले दिन रहे नहीं जबकि खूब भारी भरकम बरसात होती है ना। आज पूरा दिन भर धूप का मज़ा लिया है ना आपने, और अगर आपके लेंटर वगैरह जो गीले हो गए थे या कपड़े उपड़े जो आपको लगता था कि भाई कहीं सीलन वीलन से भर गए हैं, तो आप लोगों ने घर की खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल करके अच्छे से घर को भी धूप इत्यादि लगा ली होगी, मतलब कमरे मुतियादी में जहाँ जहाँ तक धूप पहुँच सकती है वहाँ वहाँ तक आप लोगों ने कोशिश की होगी कि पहुँच जाए। है ना, सीलन की स्मेल आजकल आने लग जाती है ना हमारे घरों से अंदर कमरों से, बड़ा इरिटेट करती है। तो उसका जो सीधा सा एक तरीका है वो यही है कि हम अपने अपने

जी हाँ श्रोताओं, तो उसका सीधा सा तरीका यही है एक कि जिस वक्त भी धूप निकलती है तो हम उस धूप का फायदा उठा लें। तो चलिए हम मौसम की तरफ चल पड़े। आपको बता दें कि आज इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान कैसा है। तो गूगल बाबा से अगर मैं पूछती हूँ तो वो हमें 28 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं। साथ में हवा में नमी 77%, परसेप्शन है 5%, यानी कि जो हमारे जहाज वगैरह उड़ते हैं उनके लिए जो विजिबिलिटी है वो 5% है। और आपको पता है ये जो पिछले दिनों जो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, परसों की बात है, तो उस दिन तो फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, फ्लाइट गई ही नहीं। हाँ जी, तभी हम लोग आपसे विजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर विजिबिलिटी कम होगी तो फ्लाइट वगैरह पर असर ज़रूर पड़ता है, उनकी उड़ानें रद्द हो सकती हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों हुआ। तो बातें हो गई हैं बहुत सारी, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं खूबसूरत गीत। गीत सारे ही खूबसूरत होते हैं, आपको ये देखना है कि उस गीत में आपके लिए क्या है, या आपको वो पसंद है या नहीं है। लीजिए, डिसाइड कीजिए।

और अब हम लेते हैं हमारा आज का संध्याकालीन सभा का विचार। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही तो इंसान को राह दिखाता है। तो सच की राह पर अगर आप चलोगे तो मुश्किलें तो बहुत होंगी, आसान नहीं होती है सच की राह, ये तो सभी जानते हैं, है ना। और सब लोग ये कहते भी हैं कि भाई जितना ज़्यादा झूठ से काम चल सके या इधर उधर चीज़ें करके काम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे आराम से काम हो जाता है। लेकिन सच्चे इंसान को बहुत बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। परंतु होता क्या है ना कि सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत तक आपके साथ बना रहता है। झूठ कभी भी साथ छोड़ करके चला जाएगा। और श्रोताओं, अब हम आपको बता देते हैं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जिसका स्टेट लेवल का ग्रैंड सेलिब्रेशन आज हमारे धर्मशाला के कॉलेज के सभागार में किया गया। क्या क्या हुआ, किस किस ने साथ मिलकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया था, सब कुछ आपको बताएंगे हम बस अब से कुछ ही देर में। साथ ही साथ आज इंडियन प्रोजेक्ट एलिफेंट डे भी है और इसको अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी बोल सकते हैं। और अगर हम वन्य जीव संरक्षण दिवस कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। तो विश्व हाथी दिवस है आज।

तो श्रोताओं एक गीत सुन लेते हैं पहले और फिर बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में आगे। आपको बता दूं फेसबुक पेज से हम लाइव हैं और इस समय हमें हमारे जो श्रोता हैं वो देख भी रहे हैं। और हम किस पेज से लाइव होते हैं ये आपको बता देती हूं आज। कई बार कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को भी कि कौन से पेज से लाइव आ गए हैं। जो ग्रीन लोगो वाला पेज है ना, हमारा रेडियो गुंजन 91.2 FM पूरा लिखा हुआ है, उस पेज से इस वक्त हम लाइव हैं और हमेशा अब हम उसी से लाइव आया करेंगे आप सभी के लिए। और धन्यवाद जो श्रोता हमें देख रहे हैं, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तो आपका नाम भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। कम से कम हम आपके नाम के साथ आपके कमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं।

तो बस ये छोटे छोटे बच्चे ही कर सकते हैं कि हाथी घोड़ा पालकी को कन्हैया लाल के साथ जोड़ सकते हैं। और याद है आपको कि आप भी किसी के लिए घोड़ा हाथी बने? जी हाँ, अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर ही बने होंगे और अभी भी बनते होंगे कई लोग तो, है ना।

अनोखा बंधन फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेंगे और राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में काफ़ी अंतर है। क्या क्या अंतर है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भारत में जहां राष्ट्रीय युवा दिवस देश के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के विचारों को समर्पित है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवाओं की समस्याओं और उनकी भागीदारी को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। और हाँ, आप कार्यक्रम में हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7018117091। अब क्योंकि युवाओं का जो विषय है वो हमने पहले ही ले लिया है कार्यक्रम में, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी युवा दिवस पर बात करना चाहे तो हमें कॉल कर सकता है और हमसे बात कर सकता है। आजकल बहुत से जो युवा हैं उन्होंने अपने अपने जो स्थान है जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ का जो साफ़ सफाई का बीड़ा है ना, जिम्मा है, वो उठा लिया हुआ है। देखते हैं हम फेसबुक पर भी और भी बहुत सोशल मीडिया पर, और अगर वो हमारे आसपास के ही हों तब तो फिर कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा लगता है हमको देख करके। और उनको देख करके एक प्रेरणा सी जगती है कि हम लोग भी काश ये सब कुछ करें अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी जगह पर। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में क्या क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर, और राष्ट्रीय युवा दिवस केवल भारत में। और भारत सरकार ने 1984 में इसकी घोषणा की थी और पहला युवा दिवस मनाया गया था 1985 में। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा 1999 में, यानी कि बहुत बाद में की गई, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और पहला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 2000 में मनाया गया।

चलिए युवाओं की बात हो रही है तो हम एक युवाओं के दिल को धड़काता गीत सुन लेते हैं और उसके बाद फिर करेंगे आपसे बातचीत।

0: जी श्रोताओं, ये एक्शन रीप्ले फिल्म का गीत था मीका सिंह की आवाज़ में। और अब श्रोताओं, ये जो गीत चल रहा था तो पीछे से हमें फ़ोन कॉल भी आ रहा था और हमने वो अभी होल्ड पर डाला हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो आइए करते हैं हम श्रोता से बात, जो कि अभी फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम तो 90s ब्रदरहुड क्लब के मेंबर बोल रहे हैं।
0: अच्छा, नाम तो बताइए अपना।
1: नाम हमारा

0: सुरजीत
1: अच्छा सुरजीत जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है जी।
1: 90s ब्रदरहुड बोला आपने,
0: जी
1: वो
0: 90s
1: क्या
0: ब्रदरहुड क्लब।
1: क्या चीज़ है वो?
0: मैम इसमें हमारा अपने एरिया की क्लीनिंग चल रही है अभी तक, और कुछ हम प्लांटेशन कर रहे हैं
1: अच्छा,
0: बाकी। जी बिल्कुल
1: तो वो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं,
0: जी सुन रहे हैं।
1: तो कैसा लग रहा है?
0: बढ़िया लग रहा है मैम।
1: और ये बताएं कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो आप लगता है सारे युवा ही हैं, 90s ब्रदरहुड
0: जी बिल्कुल, हम
1: है ना, आपने युवा जोड़े
0: नाइन्टीज के
1: अपने।
0: ही हैं मैम, बिफोर 2000 के। मैम
1: हाँ जी, तो क्या फिर क्या क्या क्या करते हैं आप अपने ग्रुप में?
0: अभी तो हमारा सफाई अभियान चला हुआ है, फिर हमें पेड़ पौधे लगा रहे हैं, झाड़ियां काट रहे हैं, जो कचरा फैलाया लोगों ने उसको साइड में कर रहे हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा
0: जी
1: देखा था हमने आपको, और बहुत अच्छा भी लगता है, इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है लोगों को जब आपको
0: जी
1: आप।
0: मैम, फेसबुक में हमारा पेज भी है, द 90s ब्रदरहुड क्लब करके।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो आप उस पे भी देख सकते हैं।
1: हाँ, लोग सुन भी रहे हैं। तो सुरजीत जी, ये बताएं कि आप इसके अलावा और क्या क्या सोचा है फिर आपने? अभी तो सौंदर्यकरण का काम चला हुआ है, इसके बाद फिर आप और क्या क्या करेंगे?
0: इसके बाद मैम यही कि हम तो चाहते हैं कि अपना जो हमारे आसपास के एरिया को छोड़ के, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जितना भी सर्कल है सभी क्लीन रहे, और सभी हमारी तरफ सफाई सफाई की तरफ ध्यान दें हमारी तरह, जैसे हम चाहते हैं। और प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि बरसातों में जगह जगह स्लाइडिंग हो रही है।
1: कर दिया आपने?
0: जी।
1: अच्छा, तो आप ये किस वक्त काम करते हैं फिर? अपने जो काम है रोजमर्रा के, वो कब करते हैं?
0: मैम हम हमारा जो ग्रुप है मैम, मॉर्निंग में हमारे एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हम एक कॉल करते हैं तो सुबह 5 बजे सभी उठ जाते हैं,
1: अरे
0: पाँच से लेकर
1: वाह,
0: 8:30 बजे तक हम सभी यही काम करते हैं।
1: 5 से लेकर 8:30 बजे तक,
0: जी मैम, अर्ली मॉर्निंग।
1: अर्ली मॉर्निंग। सुरजीत जी, उस वक्त तो इतना मुझे नहीं लगता उजाला हुआ होता है, तो आजकल वैसे भी हम थोड़ा उस ढलते हुए दिनों की तरफ जा रहे हैं, तो है ना। तो
0: जी।
1: फिर आप लोग जब शूट करते हैं उसको, तो वो किस वक्त करते हैं, जब पूरा काम कर बैठते हैं तब?
0: नहीं, मैम वो तो काम के साथ साथ चला रहता है। एक्चुअली सुबह तो हो जाती है, 4:30 बजे तक काफी लाइट आ जाती है,
1: जी
0: तो इजी रहता है हमें वीडियो शूट करने के लिए।
1: जी तो आप इस वक्त अकेले हैं या आपके साथ में और भी हैं आपके
0: नहीं
1: बैंड
0: मैम,
1: में?
0: हमारे ग्रुप के सभी मेंबर हैं इस टाइम, सभी
1: सभी
0: सुन रहे
1: मेंबर्स हैं।
0: हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो और मेंबर्स भी कुछ कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल जी, कहना चाहेंगे वो भी कहना चाहेंगे।
1: जी, बात करवाइए।
0: ये आप सोनू जी से बात कीजिए, है
1: सोनू जी? हाँ जी सोनू
0: ना?
1: जी, नमस्कार।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार सोनू जी।
2: नमस्कार मैम।
1: जी बताएं फिर, कैसा मजा आ रहा है आजकल आपको 90s ब्रदरहुड के साथ काम करके, और चाह रहे हैं कि हमारे आपके साथ और भी लोग जुड़ जाएं?
2: जी मैम, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ें, ना कि हम युवा ही। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गांव के महिलाएं, बुजुर्ग वगैरह या बच्चे हैं, वो भी साथ में मिलजुल के काम करें,
1: जी
2: जिससे एक सभी को एक मैसेज जाए।
1: जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आपका काम चलता रहे, और आप अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो, और ये जो आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं समाज के लिए, बस उसको ऐसे ही लगाए, मतलब चलाए रखिए। और मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि आप रोज ही ये काम करते हैं, चाहे बरसात हो या
2: जी
1: कुछ
2: जी
1: भी
2: जी
1: हो, है ना?
2: नहीं, हैरान किस बात के लिए मैडम जी?
1: क्योंकि बारिशों में लोग निकलते नहीं ना बाहर,
2: नहीं, वो
1: बरसात
2: तो बात सही है, पर हम भी तो हमने कोशिश की है, एक जो
0: में।
2: पहल की है वो काफी हद तक
1: अच्छी
2: कंप्लीट भी
1: बात
2: हो
1: है।
2: रही है।
1: हाँ
2: एक्चुअली क्या होता था, जब हमने ये शुरू नहीं किया था तो हम देखते थे कि आसपास बहुत सारा कचरा हुआ
1: जी
2: रहता है,
1: जी
2: और हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत से प्रवासी मजदूर वगैरह भी रहते, वो भी कचरा फैलाते हैं,
1: तो उनको भी समझा
2: तो
1: दिया
2: उन्हीं
1: आपने?
2: को भी थोड़ा सा हम समझा रहे हैं कि ऐसा ना करें,
1: जी
2: जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे और बीमारियों का भी चांसेस जो वो कम हो।
1: तब अब शुरू शुरू में तो काफी निकला होगा ना, और अब तो थोड़ा निकल गया
2: अब
1: होगा, अब कम।
2: अभी आप ये समझिए कि 50% हो गया जी,
1: अच्छा,
2: फिफ्टी
1: फिफ्टी
2: परसेंट बैलेंस
1: फिफ्टी
2: बचता
1: परसेंट
2: है।
1: और बचा है, तो
2: हाँ
1: ठीक है,
2: जी
1: अब 90s ब्रदरहुड के साथ और भी लोग जुड़ जाएं, हमारी भी यही दिली तमन्ना है। धन्यवाद बात करने के लिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से।
2: धन्यवाद मैडम जी।
1: ओके बाय। चलिए जी, 90s ब्रदरहुड के साथ हमने बात की, ग्रुप के साथ, और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

चोर बाजारी दो नैनों की गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला।

तो श्रोताओं, वन्य जीव संरक्षण विश्व हाथी दिवस की बात हम ज़रूर करेंगे कार्यक्रम में, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात भी करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं आज की तारीख की। आज की तारीख में इतिहास में क्या क्या हुआ था। शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर चंद विद्यासागर ने कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1851 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थीं। 2000 में भारत की पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक, उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। 1919 में डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे, जिन्होंने इसरो की नींव रखी, उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। ১৯৩১ में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर अपने कार्यों के लिए जाने जाने वाले प्रमुख भारतीय इतिहासकार इरफान हबीब का हुआ था जन्म।

और अब थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं हम विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में, जो कि एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थानों की स्थापना की। उन्हें 1966 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है और ये सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि विक्रम साराभाई ने ही अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित कर दिया था। और इसके साथ ही उन्होंने वस्त्र, औषधि, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कई क्षेत्रों में भी समान योगदान दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये थी कि वे एक ऐसे उच्च कोटि के व्यक्ति थे जिनमें दूसरों के प्रति असाधारण सहानुभूति थी। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो भी उनके संपर्क में आता था उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। वे जिनसे भी बातचीत करते उनसे तुरंत एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेते थे। और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। तो जरूरी नहीं है श्रोताओं कि जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं अपने इस कार्यक्रम में कि हम सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हॉलीवुड या बॉलीवुड से संबंध रखता हो। हमारे देश को जिन्होंने गौरव दिलाया वो भी हमारे सेलिब्रिटी ही होते हैं, चाहे वो हमारे बीच में अब हैं या नहीं हैं। ऐसी ही एक और शख्सियत है भगवत शरण उपाध्याय जी। हाँ, इनके बारे में बात करेंगे कुछ देर के बाद।

मंजिल फिल्म का गीत है ये, पहचान तो आप गई होंगे, आवाज़ किशोर कुमार की। हालांकि आज नहीं, रिमझिम सावन बरस रहा है।

श्रोताओं, अभी तो नहीं बरस रहा है, लेकिन जरा बाहर की तरफ नज़र तो डालिए, देखिए उमड़ घुमड़ कर बादल जो पहाड़ हैं उस तरफ से कैसे आ रहे हैं।

जी रिम झिम गिरे सावन ये गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमने आपको कहा था ना कि आज हमने बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया है इस दिवस को। जी हाँ, तो इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डिग्री कॉलेज धर्मशाला, अनुभव ट्रस्ट और गूंज संस्था के यानी कि गुंजन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था हेल्दी चॉइस फॉर ब्राइट फ्यूचर, जिसमें कि जिला के लगभग 100 शिक्षण संस्थानों ने के विद्यार्थियों ने भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपना करके नशे से दूर रहने और बेहतर भविष्य के निर्माण को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए। समारोह में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की क्षमता, प्रतिभा और सामाजिक जिम्मेदारियों को पहचानने का अवसर प्रदान करता है और आज के युवा ही कल के समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, इसलिए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर के कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रह करके शिक्षा, खेल, रचनात्मक गतिविधियों तथा सामाजिक सेवा से जुड़ने की अपील तथा आह्वान किया कि वे स्वयं स्वास्थ्य विकल्प अपनाने के साथ साथ अपने साथियों और समाज के अन्य वर्गों को भी जागरूक करें। और इसी तरह से एंटी चिट्टा अभियान में भी सक्रियता बढ़ाएं युवा, ये उनका आग्रह था। और इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी हेल्दी चॉइस फॉर ब्राइट फ्यूचर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और जैसा कि मैं श्रोताओं हमेशा कहती हूँ ना आपसे कि इस अमुक कार्यक्रम की साक्षी मैं भी रही, इस कार्यक्रम की साक्षी तो मैं थी ही, क्योंकि मैं भी उसी ऑडिटोरियम में मौजूद थी और मैंने भी उन पलों को उन मोमेंट्स को एंजॉय किया। अंदर तक फील हुआ कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, और युवा जो हैं वो कितने जानकार हैं, कितने जागरूक हैं। बात भी की है उनसे, बताऊंगी ज़रूर, आपको दिखाऊंगी भी कि क्या क्या हमारे युवाओं ने हमसे बात की है। यहाँ से तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ आप रील्स के ज़रिए देख लीजिएगा। चलिए फिर से युवाओं के बारे में बात हो रही है तो हमें पता है कि अब चाहे वो तड़कता भड़कता सा संगीत हो या फिर सॉफ्ट सॉफ्ट सा म्यूज़िक हो, हमारे युवाओं को सब कुछ पसंद आता है। और पुराने गानों की तो खासियत भी यही होती है ना कि हमें आज तक वो गाने याद रहते हैं। जो अभी अभी नए नए बनते हैं ना, तो वो तो आज सुने और कल भूल गए। पुराने गानों की खासियत है ना, आप लोगों को भी याद है ना उसका एक एक बोल, एक एक आगे का अंतरा, क्या क्या उस गाने में अगली लाइन कौन सी है। आप लोग मुझे पता है कि साथ साथ में गुनगुनाते भी हैं। तो ऐसा ही एक गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

जी श्रोताओं, आँखों में तो बहुत सारे राज होते ही हैं, और आपकी आँखों में क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सामने वाले की आँखों में जब आप देखते हैं ना, तो आपको पता चल ही जाता है कि उसकी आँखों में आखिर क्या है। तो चलिए फिर इस गीत के साथ आगे को बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में, और अब आपको सुनवाएंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। और समाचार सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप इस कार्यक्रम में मज़ा लेते हैं गीतों का या फिर हमारी बातों का।

0: निगम से निधि प्राप्त करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों की कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे कर लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में आज श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत लिए। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल, शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं जॉयस अर्शिता ने रजत और कुमारिशन पद्म गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओं, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कुछ भी कहने सुनने से पहले एक और गीत आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम में। तो थोड़ा सा कह भी लेते हैं, जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अभी वो जुड़ा तो हुआ है बड़ी ही भावनाओं से। और कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि देखिए, जब हमारी शादी होती है ना नई, तब तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने मायके में फेरा डालते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन जब बहुत बहुत समय बीत जाता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ स्टैग्नेंट से हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि कोई बुलाएगा तभी हम वहाँ जाएँ, ऐसे हम मुँह उठा करके ना चले जाएँ। तो कुछ ऐसा ही गीत है ये कि शायद वो जो बिटिया है वो बहुत समय से अपने मायके नहीं गई है, और आगे आ रहा है ना रक्षाबंधन का त्यौहार भी, तो उससे भी कुछ मिलता जुलता, कुछ बड़ा इमोशनल सा गीत, आइए सुनते हैं। और हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो इससे कनेक्ट ज़रूर करेंगी।

तो श्रोताओं, बंदिनी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे आशा भोसले ने गाया था और शैलेंद्र ने लिखा। भारतीय सिनेमा का एक अत्यंत भावुक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गीत। गीत न केवल सावन में मायके जाने की इच्छा व्यक्त करता है, बल्कि भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं के अलगाव, उनके संघर्ष और बचपन के खोने के का जो खो जाता है ना बचपन, उसके खोने का दर्द को भी दर्शाता है, और जो कि हमेशा से प्रासंगिक रहा है और आज के समय में भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा। तो कुछ गीतों की खासियत ऐसी ही होती है श्रोताओं। और ये गीत जो है ना, वो पराया धन की सामाजिक सोच को भी चुनौती देता है, जहां पर नूतन द्वारा अभिनीत कैदी के माध्यम से ससुराल को कैद और मायके को आज़ादी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ एक जो रूपक है वो अलग ही दे दिया गया है, मतलब जो संदर्भ है ना वो बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। अगर हम इस फिल्म को देखेंगे और इस गीत को सुनेंगे, तब हमें समझ में आता है कि जो ससुराल है वो इस समय, मतलब जो कैद है जिसमें वो जेल में बंद है, तो वो उसको ससुराल जैसी प्रतीत होती है, और जो आज़ादी है वो मायके जैसी। तो ये एक बेटी की पराई हो जाने की टीस को भी उजागर करता है।

इसी के साथ हमने कार्यक्रम में आप आगे आपको पहले मतलब कहा था कि हम भगवत शरण उपाध्याय के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो 11 जुलाई 1910 को जन्मे और 12 अगस्त 1982 को वो ये फानी दुनिया छोड़ करके चले गए थे, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। एक शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार थे। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, संस्कृति और पुरातन का गहन अध्ययन किया। उनकी भाषा शैली साहित्यिक खड़ी बोली है, उसमें समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है किया गया था। उन्होंने आलोचनात्मक, भावुक और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है और कभी कभी रेखा चित्र शैली का उपयोग भी किया। उनकी रचनाओं में विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, कादंबरी, भरवा आम, लाल चीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध की महिमा, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर आदि शामिल हैं। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्रिका का संपादन भी किया और वे हिंदी विश्वकोश के संपादकीय मंडल के सदस्य भी रहे। उन्होंने मॉरिशस में भारत के राजदूत और विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के पद भी संभाले। ऐसी शख्सियतें हैं, श्रोताओं, पैदा होती हैं, चली जाती हैं और बाद में फिर हमें उनके महत्व का पता चलता है। उनके रहते रहते हमें समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं और इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा क्या होगा। बहुत कुछ दे जाते हैं वो समाज को।

और अब बारी है हमारे युवाओं की। तो आज का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है उसका इस वर्ष का मुख्य थीम है विभिन्न संदर्भ सामान्य आकांक्षाएं। यानी कि संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दृष्टांत जो है हमें पहुंचना जहां है वो साझी है, एक है सामान्य है। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना और वैश्विक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। चलिए और बातें भी करेंगे लेकिन फिर से चलते हैं गीत की ओर।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि आज हमारे धर्मशाला कॉलेज के सभागार यानी ऑडिटोरियम में एक फुल फ्लेज कार्यक्रम हुआ है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर के। तो उस कार्यक्रम में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने नशा उन्मूलन को विशेष प्राथमिकता दी है और इसी दिशा में व्यापक एंटी चिट्टा अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अपने आसपास के युवाओं को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता बल्कि परिवार और समाज के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने जीवन में सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी ऊर्जा का उपयोग शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में करें। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक ने युवाओं द्वारा लगाई गई प्रतिभा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और अनुभव ट्रस्ट का विधिवत शुभारंभ किया। इसके अलावा अनुभव ट्रस्ट और गुंजन संस्था की गतिविधियों की सराहना भी की। तथा केवल सिंह पठानिया ने आयोजकों को 1,00,000 रुपये की धनराशि अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा की। और इसी तरह के कार्यक्रम हमारे पूरे देश में आयोजित किए गए हैं। श्रोताओं, आज नई दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और अगर मैं यूं कहूं कि उस कार्यक्रम की भी साक्षी में रही हूं तो इसमें भी कहना कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हाँ, रेडियो के माध्यम से हम हर एक जो बात है वो हमारे तक पहुंच ही जाती है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, चाहे आप उस कार्यक्रम में थे या नहीं थे, लेकिन आप तक ये चीज़ें पहुँच तो गई हैं ना। और कई लोगों ने वहाँ पर लाइव भी किया है बैठ करके, उसमें से मैंने भी बहुत सारा लाइव किया है, तो आप जाकर के वहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्या क्या गतिविधि रही, कैसे कैसे कौन कौन आया था, किस किस ने क्या क्या बात कही। और हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला के पेज से भी लाइव उस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हुई है, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हमने की है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। श्रोताओं, हम समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम, मतलब जो रेडियो से सुनते हैं आप, वो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो उनमें 12 से लेकर के 1 बजे तक कुछ विशेष कार्यक्रम आपको सुनने को मिलते हैं, जिसमें कि एक कार्यक्रम है मन संवाद, जो कि प्रियशी, डॉक्टर प्रियशी और हमारी रुचिका, आरजे रुचिका, दोनों मिलकर के करती हैं, जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य पर बातें होती हैं और कानूनी समस्याओं से रिलेटेड कार्यक्रम होता है मेरे हौसलों की उड़ान, उसमें भी आरजे रुचिका बात करती हैं रुमा गुलेरिया के साथ। और कुछ विशेष कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, जो कि आपको हम फेसबुक पेज पोस्ट के माध्यम से बता ही देते हैं, वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है। जैसे पिछले कुछ दिनों एक स्नेक बाइट का कार्यक्रम था, सांपों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, वो भी आपने सुना होगा। उसमें हमारे विजय सर ने बात की थी, जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए थे उनके साथ। तो ये जो 12 से 1 बजे तक का समय रहता है ना, इससे इसमें भी आप हमारे रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ ज़रूर जुड़ा करिए। और हमें पता है कि आप इधर उधर हो जाते हैं, 24/7 तो आप नहीं सुनते होंगे, लेकिन ये कुछ कुछ विशेष समय होते हैं जिनमें आप कुछ खास कार्यक्रम जो होते हैं उन्हें ज़रूर सुना करें। फिर उसके बाद कार्यक्रम आता है शशि वाला, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमें पता है, पता नहीं कहां कहां से दूर दूर से भी फ़ोन आते हैं शशि को, और अब तो शशि ने भी बहुत अच्छी तरह से उस कार्यक्रम को संभालना शुरू कर दिया है।
और हमारी शशि आरजे जो है वो बड़ी ही सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। और यहाँ पर जितने भी आरजेज हैं सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं और सभी अपने अपने तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और अपने जो मन के भाव हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। और जब बात चल ही रही है तो मैं फिर इंदी अपनी गप्पा को कैसे पीछे छोड़ दूं, और सचिन कपूर जो हैं इस समय मेरे टेक्निकल असिस्टेंट हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये जो बच्चे हैं ना यहाँ, ये जो आरजेज हैं, ये आपके साथ बातचीत तो करते ही हैं लेकिन यहाँ पर हमें टेक्निकल जो तकनीकी चीज़ें हैं शायद उसमें हम पिछड़े हुए हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि ये कंसोल कैसे संभालना है, क्या करना है। जब आप फेसबुक पेज पर लाइव देखते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी सी यहाँ पर कुछ पड़ा होता है, वहाँ आप देखते होंगे बहुत सारे फेडर्स होते हैं जिन्हें ऊपर नीचे करना होता है और हर एक फेडर का अपना अपना एक महत्व होता है कि कहाँ से कौन से आप तक न्यूज़ पहुँचेंगी, कहाँ से हमारी आवाज़ पहुँचेगी, कौन से वाले से आप जो गीत सुनेंगे, जो म्यूज़िक है वो सुनते हैं आप। तो वो सारी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं ना वो इन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, अब तो हमें भी पता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं। कई बार कोई स्टक हो गया है कुछ तो फटाफट से ये जो बच्चे हैं ये सभी ठीक कर देते हैं। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में हमारे साथ होते हैं सचिन कपूर, सुबह के वक्त कभी शशि होती हैं, कभी रुचिका होती हैं। तो ये सभी सहयोगी होते हैं, ये सभी हमारी टीम के मेंबर्स हैं और इन सभी के सहयोग से ये जो कार्यक्रम है बड़ी स्मूथली, बड़े अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाए जाते हैं। और मेरा प्यारा दोस्त जो माइक है वो तो है ही वो नहीं होगा तो हमारी आवाज़

और श्रोताओं, आपको ये भी बताती चलूँ कि जी गीत का एंजॉय आप कर रहे थे, लेकिन इस आनंद के साथ साथ में ये आनंद भी है आपके लिए कि 7018117091 पर आप हमसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यतः हम बात कर रहे हैं।

जी श्रोताओं, गुड इवनिंग। धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं और ये जो हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है, विभिन्न संदर्भ और साझा आकांक्षाएं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और कॉमन एस्पिरेशंस, ये थीम भारत के लिए बेहद सटीक बैठती है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, लगभग 35.6 करोड़ रहती है यहाँ पर, और भले ही हमारे देश के युवा अलग अलग राज्यों, गांवों, शहरों और परिस्थितियों यानी विभिन्न संदर्भों से आते हैं, लेकिन एक सफल और सशक्त भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएं एक जैसी हैं। दुनिया भर में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार योग्यता की, यानी कि युवा ये तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन आप में उस रोजगार के लिए योग्यता भी होनी चाहिए ना। तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2026, नेशनल यूथ पॉलिसी 2026 का मुख्य फोकस युवाओं को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स और डिजिटल टूल्स जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस करना भी है। और युवा पीढ़ी स्किल इंडिया मिशन जैसे पहलों के माध्यम से खुद को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार कर सकती है। वैश्विक स्तर पर आज का युवा डिजिटल नेटिव यानी डिजिटल युग में जन्मा है, लेकिन बुनियादी ढांचों की कमी के कारण अभी भी कई युवा पीछे छूट जाते हैं। भारत के महानगरों में युवाओं के पास डिजिटल अवसर तो भरपूर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी और टेक ट्रेनिंग पहुँचना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र और माय भारत मेरा युवा भारत पोर्टल से जुड़ करके ग्रामीण युवा भी राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियरशिप और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह से स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार यानी इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस में भी वो अपने हाथ आजमा सकते हैं। दुनिया भर के सफल स्टार्टअप्स में 40% से अधिक योगदान 30 वर्ष से कम युवाओं उम्र के युवाओं का है, और भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन चुका है, जिसमें कि 2.3 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारतीय युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला यानी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और इसी तरह से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक आंदोलन, वैश्विक आंदोलनों का नेतृत्व 65% युवा ही तो कर रहे हैं। भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों जैसे बेमौसमी बारिश, अत्यधिक गर्मी के प्रति बेहद ही संवेदनशील है, और पर्यावरण संरक्षण अब हमारी राष्ट्रीय युवा नीति का एक कोर क्षेत्र है। अभी आपने सुना ही था श्रोताओं, हमने जिनसे बात की फोन पर, उनका जिनका कॉल आया था, तो वो भी यही तो कह रहे थे कि हम अपने आसपास को किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्र को किस तरह से साफ कर रहे हैं। और भारतीय युवा स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियों का नेतृत्व करके ग्लोबल एक्शन में योगदान दे सकते हैं, जिसका उदाहरण तो अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सुन ही लिया। और अब आधुनिक जीवन शैली, करियर का दबाव, सोशल मीडिया के दौर में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता भी बहुत जरूरी हो गई है। परीक्षाओं का तनाव, पेपर लीक की चिंताएं और भविष्य को लेकर अनिश्चितता भारतीय युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलिंग सपोर्ट को मजबूत करना, खेलकूद और खेलो इंडिया जैसे पहलों से जुड़ करके शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखना इस दिवस का बड़ा संदेश होना चाहिए। तो भारत सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है, तो देश के युवाओं को इसके लिए अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे युवाओं को ये याद दिलाने का बेहतरीन अवसर है कि उनकी स्थानीय सफलताएं ही देश को वैश्विक पटल पर आगे ले जाएंगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे तो हम बढ़ेंगे ही, एक गीत आपके लिए रेडी रखा है हमने, लेकिन हाथियों की बात नहीं की, विश्व हाथी दिवस भी है आज। कोई भी बात करने से पहले मैं आपको वो याद दिलाना चाहती हूँ कि जब साउथ में एक हादसा हुआ था, एक क्या होते ही रहते हैं वहाँ पर हाथियों के लिए खाने में कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ डाल करके रख दिया गया था जिससे कि उस हाथी की बहुत बुरी दर्दनाक मौत हुई थी। वो बात मुझे कभी भी भूलती नहीं है और मैं इस बात पर भी गौर फरमाना चाहूँगी, आपसे बताना चाहूँगी कि अक्सर मैं गांधी जी की बात करती हूँ यहाँ से, तो गांधी जी ने भी ये कहा था कि किसी देश की जो तरक्की होती है वो इसी बात पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि उस देश में रहने वाले जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार वहाँ के जो लोग हैं वो करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, उससे ज़्यादा अब मैं क्या कहूँ। आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अब क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस की ओर भी अग्रसर हैं और हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ तिरंगा यात्रा भी हमारे देश में जगह जगह पर निकाली जा रही हैं, यहाँ पर भी हुई। आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

इसके साथ साथ ही हम कुछ खबरें भी ले लें कि अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट हो चुका है।

और अखबारों की माने तो ये कहा जा रहा है कि युवा सशक्त होंगे तो देश होगा सशक्त। सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान खोजने का साहस भी दिखाइए। ये बातें कही हैं आईआईटी दिल्ली में छात्रों से मोदी।

0: और हनी ट्रैप में फंसा है भारतीय युवा सेना का विंग कमांडर, तो श्रोताओं इस तरह की चीजों से बच के रहिए। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक समाचार जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।
1: पूरा सहयोग प्रदान करेगी राज्य सरकार, चिकित्सा सुविधाओं का लिया जायजा। मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिले के 1500 मछुआरों को 52.5 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर उपकर लागू करने के फैसले की भाजपा ने की आलोचना, जनता पर बताया आर्थिक बोझ। राज्य के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 1 सितंबर से होगा शुरू। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवा शक्ति को बताया देश की सबसे बड़ी पूंजी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विस्तार के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने आज एम्स का दौरा कर डॉक्टरों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और डॉक्टरों को प्रोफेसर के पद पर डेजिग्नेट करने के लिए मापदंडों में छूट दी जा रही है।
2: सरकार ने फैसला किया है जो भी सुपर स्पेशलिस्ट करके आएगा सरकार उनका वॉक इन इंटरव्यू करवाएगी। मैंने कल ही दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सुपर स्पेशलिस्ट करके आता है उसको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं लगाना है, क्योंकि काफी डॉक्टर जो है वो छोड़कर जाते हैं। तो अगर हम उनको अच्छा पैसा देंगे तो वो हिमाचल प्रदेश के अपने हॉस्पिटलों में रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारे हॉस्पिटल जो थे, मेडिकल कॉलेज थे, 35% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। कुछ नियुक्तियां होनी है, कुछ नियुक्तियां इस दिसंबर तक हम कर देंगे, तो 80% तक हम सारे पैरामेडिकल स्टाफ की और उनकी नियुक्तियां कर देंगे।
1: इस बीच मुख्यमंत्री ने आज झंडुता विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया और मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिले के 1500 मछुआरों को 52.5 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इसमें प्रति लाभार्थी को 3500 रुपए दिए गए हैं। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मछुआरा समितियों पर लगाए गए 5 गुना जुर्माने को माफ करने और कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने पर दिए जाने वाले अनुदान को 70 से बढ़ाकर 80% करने का ऐलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में मछुआरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने के लिए 50 लाख रुपए और मछुआरों के लिए लैंडिंग सुविधाएं विकसित करने को लेकर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने झंडुता विधानसभा क्षेत्र में 10 संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सड़क को 10-10 लाख रुपए देने और राजकीय स्नातक महाविद्यालय झंडुता में बीसीए व बीबीए कक्षाएं शुरू करने का भी ऐलान किया। राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 60 पैसे का अनाथ व विधवा उपकर लगाया है जो आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है।
2: मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा लेते हैं, जिसको कि हमने कानून पास किया। और आज खुशी इस बात की है कि आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। मैंने ये कहा कि उस गैप को भर लेते हैं, फिर भी हम कम रखते हैं।
1: दूसरी ओर भाजपा ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में कहा कि सरकार ने अनाथ और विधवा उपकर का नाम देकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला है। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली पर मिलने वाला अनुदान भी खत्म कर दिया है।
3: तरह तरह के टैक्स लगा करके जनता का जीना मुहाल किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार। आज फिर एक और नाम लेकर के 60 पैसे का रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ा दिया गया। तरह तरह के नाम लेकर के टैक्स बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बिजली में भी तरह तरह के सेस और टैक्स लगा करके लोगों को बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बिजली की सब्सिडी समाप्त कर दी है। राशन डिपो पर मिलने वाला जो राशन है उसकी सब्सिडी समाप्त हो रही है, राशन मिलता नहीं।
1: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। निदेशालय जनगणना कार्य के अधिकारियों का आज शिमला में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव के पंत ने की। जनगणना कार्य निदेशक दीप शिखा शर्मा ने बताया कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 17 से 31 अगस्त तक लोगों के लिए स्वगणना का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव ने जनगणना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जनगणना अधिकारियों, जिला प्रशासन और उनकी टीमों को बधाई दी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं और युवा शक्ति के विकास के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार HIV में भारत के केवल 15 जिले ही सुरक्षित श्रेणी में हैं, जिनमें से हिमाचल के 3 जिले शामिल हैं।
4: जो 15 जिले जिसे हम कह सकते हैं कि सुरक्षित में आते हैं, उसमें से 3 जिले हमारे सोलन, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, तो 3 जिले समझो जागरूकता अभियान का फायदा हो रहा है। इस प्रकार का जागरूकता शिविर और भी लगाए जा रहे हैं, जिसका आज से संचालन आरंभ हुआ है। किसी देश की सबसे बड़ी संपदा मैं समझता हूँ वहाँ का हमारा युवा शक्ति होती है, उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनका अपना चरित्र ऐसा बने कि वो कल के सशक्त युवा बने।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिमाचल पुलिस द्वारा राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ब्रास बैंड धर्मशाला पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों ने बैंड का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम की धुन और गायन के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की जा रही है।

0: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश पुलिस द्वारा वंदे मातरम गीत का वाद्य यंत्रों के साथ गायन किया जा रहा है।
1: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक आधार पर झूठे मामले बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज सुजानपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस से अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने प्रधान

0: मंत्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ कुछ घंटों में ही झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल पूछना विपक्ष का काम है, लेकिन भाजपा नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से मामले दर्ज करना गलत है।
1: 2.5 साल से मुख्यमंत्री प्रदेश का एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश के लोगों के साथ वायदे जो है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें अंदर करके मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के काम कर देते हैं तो उस बलिदान को देने के लिए हम तैयार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते मैंने सरकार से कुछ सवाल किए थे, सरकार के सवालों का जवाब आए, जवाब में FIR आई। हमने सिर्फ हमारे साथियों ने इसी पुलिस स्टेशन में 48 घंटे पहले एक कंप्लेंट दर्ज करी कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भद्रवासा कांग्रेस के कुछ तीन नेताओं के खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो उनके ऊपर FIR दर्ज की नहीं।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण क्षेत्र के सुन्नी इलाके में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुन्नी से खैरा व लुहरी तक सड़क को 200 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सुन्नी क्षेत्र में लोगों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने को लेकर एक परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की गरावग पंचायत में 8,60,00,000 रुपए से स्तरोन्नत होने वाली बड़वी गरावग संपर्क सड़क के कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में 182 नई सड़कों का निर्माण हुआ है। रोहित ठाकुर ने कहा कि 5.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीमावर्ती कुड़ी मोहाली संपर्क सड़क को भी जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, बिलासपुर में एम्स के विस्तार के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी राज्य सरकार, चिकित्सा सुविधाओं का लिया जायजा। मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिले के 1500 मछुआरों को 52,50,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर उपकर लागू करने के फैसले की भाजपा ने की आलोचना, जनता पर बताया आर्थिक बोझ। राज्य के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 1 सितंबर से होगा शुरू। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने युवा शक्ति को बताया देश की सबसे बड़ी पूंजी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम में अब थोड़ा सा समय हमारे पास बाकी है, शेष है श्रोताओं, तो अब इसी वादे के साथ कि 15 अगस्त की सुबह को मैं मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मुझे दिया सचिन कपूर ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार। ये रहा कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जगहों से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो गुंजन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: ऐसे क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है,
4: ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

धरती हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
4: कहाँ चले?
5: हमको मंडी जाना है।
4: ऐसे क्या देख रही है?
5: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
6: भाव कहाँ खा रहे हो? भाव तो दिए
5: हैं।
6: दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करने। स्कूटर भी पढ़ देता।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
9: वही जो आप किया करते थे।
8: कौन सी?
9: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे?
4: कर्तव्य।
3: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
5: समझ गए सर।
3: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।

भक्ति हमें संकटों से लड़ना सिखाती है और हमारे वीर शहीदों का बलिदान हमें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाता है। महादेव की जगहों से बहती गंगा से पवित्र है हमारी आजादी, जिसे बनाए रखना हम सब का संकल्प है। तो आइए सावन के इस पावन उमंग में महादेव को नमन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। हाथों में थामे तिरंगा और गर्व से कहें, हम आजाद हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पावन मास की अनंत शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: इतने बड़े कमाल की बात कही है कि भीड़ में खोना जरूरी नहीं है और ना ही गुरूर में जीना जरूरी है। जरूरी है तो बस एक चीज, अपने विचारों के साथ सही रहना। हर किसी के साथ मेल बिठाना समझदारी नहीं है, कभी कभी दूर रहना भी मन को शांति देता है। हमारी जिंदगी और आसान तब लगने लगती है जब हम अपनी जिंदगी में सही लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, है ना?
3: कहाँ चले?
4: हमको मंडी जाना है।
3: ऐसे क्या देख रही है?
4: अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे चार क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो, अंदर जाओ।
5: भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए
4: है,
5: दहेज दिए है, मतलब भाव दिए, खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछिएगा तो मिलेगा यूज करना, स्कूटर भी पर देगा।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: बीबी एक बात बताओ, शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है?
8: वही जो आप किया करते थे।
7: कौन सी?
8: कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।